107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है रविवार, शक संवत 1948, अश्विन माह 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुनेंगे और साथ में हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध रहेंगे।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को ही अब समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे।

0: चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। रास्ते कितने भी कठिन हों, हौसले मजबूत हों, तो मंजिल दूर नहीं। ये था आज का चिंतन। और लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं मीरा भजन लता मंगेशकर की आवाज में।

लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 338। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज भाग 11 प्रसारित होगा। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन, गायक एवं संगीतकार, संवादिका ममता सिंह। सुबह 7 सुनिएगा भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के और 8 समाचार प्रभात। पर और पुनः दिन में 2 आप सुनेंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजू द्विवेदी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुबह 10 बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनेंगे आप गौतम कृष्ण चंदानी कास्टिंग डायरेक्टर से नेहा शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति देश्री कामले। सुबह 11 विविधा में आप सुनेंगे सृजन भारती काव्य तरंग, हिंदी पखवाड़े पर विशेष कवि गोष्ठी, प्रतिभागी सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण शर्मा, दमयंती दीपा, संचालन ममता सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दोपहर 12 सुनिएगा हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल और सुरीला सफर दिन में 1। दोपहर समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर और 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का। दोपहर 3 मन चाहे गीत, संवादक मंजू द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। नाट्य तरंग में आप सुनेंगे प्लास्टिक की घास, इसका भाग 2 आज प्रसारित होगा। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। दिन में 3:30 पर आप इसे सुन सकेंगे। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5:00।

बजकर 30 मिनट पर तरानी नई पुरानी कार्यक्रम, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:05 पर पुनः तरानी नई पुरानी कार्यक्रम जारी रहेगा। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित रॉय की गाथा आज आप सुनेंगे। वाचन और स्वर मंजरी वर्मा का है। प्रस्तुति देश्री कामले की शाम 7 बजे। इंद्रधनुष में आज आप सुनेंगे साज और आवाज, गिटार चरणजीत सिंह, 7:45 पर। और रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी, हमारा क्या होगा, लेखक प्रकाश साथी, निर्देशन कमल दत्त का है। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे पुनः आप सुनेंगे विविधा। तो ये थी दिनभर के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोका। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 338।

रावण की आसुरी सेना का प्रायः विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर दूषण विराट बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी, आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल डींग हाँकते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्निवाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं और आज देखते हैं कि शेखर दादा क्या सुनवाने वाले हैं। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक नाम याद आ रहा है, शर्मा बंधु, जिनके भजन को हम सुन सुनकर कहीं छाया पाते हैं, धूप से निजात पाते हैं। शेखर दादा बताइए क्या सुनवाएंगे।
2: जैसे कभी कभी अचानक कोई तूफान आ जाता है,
1: हाँ,
2: या अचानक कोई जोरदार से बादल गरजते हैं और कोई बारिश बहुत धमाकेदार आ जाती है, वैसे ही कभी कभी बहुत कड़कती धूप हो और अचानक एक बादल आकर के छा जाए, तो जैसी शीतलता आपको अचानक मिलती है
1: जी।
2: वैसी शीतलता मिली थी 1974 के एक भजन से, जब अचानक बिल्कुल अपरिचित चार भाइयों ने, जिनको हम शर्मा बंधु के रूप में जानते हैं, उन्होंने एक भक्ति रचना प्रस्तुत की और बाद में उसको फिल्म परिणय के लिए जयदेव जी ने उनकी ही धुन को रिकॉर्ड करके उस गीत को और भी अमरत्व प्रदान किया। तो मैं चाहता हूं कि आज इस कड़ी में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को ये रचना सुनाएं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया।

0: क्या बात है। परिणय फिल्म की ये रचना जब भी हम सुनते हैं तो सच में ऐसे लगता है कि कड़ी धूप में छाया मिल गई है। दादा, इन ये जो रचना है इसकी कुछ बारीकियां बताइए और शर्मा बंधु के चारों बंधुओं के नाम और इनके शैली के बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
1: तो खैर उसी परिवार के और भी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उन लोगों ने भी इसका ध्वज धारण कर लिया है, तब हमारे पास शर्मा बंधु की टीम्स हैं बहुत सारी। लेकिन जिस समय ये शुरू हुआ था उसकी सबसे विशेष बात ये थी कि बिल्कुल एक जैसा चारों भाई मिलकर गाते थे। ये उत्तर भारत में ही परंपरा नहीं थी, दक्षिण में जो है, दक्षिण के आप 50 सिंगर्स को एक साथ बिठा के गवा देंगे वो बिल्कुल एक जैसा गाएंगे, पर उत्तर भारतीय संगीत परंपरा में एक जैसा गाने वाले दो सिंगर भी आपको नहीं मिलेंगे।
0: जी,
1: फिल्मी गानों की बात अलग है, पर यहाँ चारों भाई मिलकर गाते थे और बिल्कुल एक साथ मिलकर गाते थे। उनकी सांस लेने की जगह भी तय होती थी ऐसा मैं लगता है मतलब सुन करके, और वो इतना प्रभावी हुआ उस समय, एक जादू कर दिया। और हमारे यहाँ ये अद्भुत बात है कि हर 5-10-15 साल में ऐसा कोई ना कोई जादू अचानक कोई जाकर के छिड़क देता है हमारे ऊपर और उस जादू से हम लोग आनंद में रहते हैं। तो ये रचना शर्मा बंधु जी की, ये लोग उज्जैन के थे मूलतः मध्य प्रदेश के, तो बहुत

0: अच्छी रचना उन्होंने गाई और बहुत वो उसको प्रसिद्धि मिली
1: जी। अब आगे हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनवाने वाले हैं?
0: मैं ये बताना भी चाह रहा हूँ कि अमूमन अधिकांश गायकों ने गायिकाओं ने अपने प्राइवेट एल्बम्स भी निकाले, दो एक ही हैं जिन्होंने गजलों के एल्बम निकाले होंगे, पर ज्यादातर गायक गायिकाओं ने अपने भजनों के एल्बम्स निकाले
1: जी।
0: इसमें कई चीजें बहुत प्रसिद्ध हुई, जैसे मुकेश जी की रामायण बड़ी प्रसिद्ध हुई, फिर सुधीर फड़के जी का गीत रामायण मराठी में वो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सुंदर उसका सेट बना था। ऐसे ही लता जी के प्राइवेट सॉन्ग्स थे मीरा, या उनकी ज्ञानेश्वरी मराठी में, तो ऐसे बहुत सारी हमारे यहाँ प्राइवेट एल्बम्स की एक परंपरा मिलती है। और उसी परंपरा में एक गायक का एक बहुत ही अद्भुत हमारे ऊपर छाप हमारे मनों में है, जिस गायक ने सबसे कम गाने गाए संख्या के हिसाब से, पर जिन गायक के एवरेज के हिसाब से सबसे ज्यादा गाने हिट हुए, और उनका नाम था आदरणीय मुकेश जी।
1: जी जी।
0: और मुकेश जी ने जब भी गाया तो वो भारतीय जनमानस को हमेशा बहुत भाया
1: जी।
0: मुझे ऐसा लगता है आप भारत के किसी भी शहर किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको वहां मुकेश जी के गाना गाने वाले लोग मिलेंगे ही
1: जी। चाहे दिल टूटा हो किसी का, चाहे किसी से चाहे, दिल जुड़ा हो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: फिल्मी गीत हो, भजन
0: फिल्मी
1: हो, कव्वाली
0: हो, भजन हो, जो भी हो, क्योंकि मुकेश जी सरल गाते थे
1: जी जी।
0: बाकी सब मान लीजिए, मैं मुझे अगर आप कहें कि मन्ना दा का गाना गाना है तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लता जी का गाना है, आशा जी, इसमें थोड़ा सा रफी साहब, लेकिन मुकेश जी का गाना तो मैं गा सकता हूँ कभी भी। और ऐसा ही एक भजन उनका था जो उनके निधन के बाद रिलीज हुआ 1976 में, अमेरिका में डेट्रॉयट में मुकेश जी का अकस्मात निधन हुआ, उस समय ये भजन रिलीज हुआ था, और वो एकदम चुटकी बजाते पूरे देश में इतना प्रसिद्ध हो गया कि हम सब उसको कब से गा रहे हैं हमें भी याद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता इसको सुने, जितना अच्छा मुकेश जी ने गाया है उतनी ही अच्छी इसकी धुन है और उतने ही सुंदर इसके शब्द हैं
1: जी।
0: जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे।

0: अद्भुत रचना है ये मुकेश जी के स्वर में। तो अब इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिश्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करते हैं इस पहले गीत के साथ। अमर फिल्म से ये गीत है लता मंगेशकर के स्वर में, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद की बनाई।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: जो हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
3: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
2: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शिवन रिजवी का लिखा, एआर कुरैशी का संगीत बद किया, आलम आरा फिल्म का नाम है, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ओपी नैयर का संगीत बत किया। मजदूर सुल्तानपुरी ने इसके बोल लिखे हैं, गीता दत्त की आवाज है, फिल्म का नाम है आर पार।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत अलीबाबा और 40 चोर फिल्म से आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत है, एस एन त्रिपाठी चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजें।
1: चलो चलो चलें हम बबूल के तले,

0: के जले।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को नमस्कार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरती

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के.
2: मैदा टीका ला लिया और तू भी ला ले.
3: नहीं यार मैं नहीं लौना.
2: ऐ तो फिर यार मार वाली गल होगी.
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ. नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है.
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ. बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ. वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097. पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी.
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आज है अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन।
2: ये कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट तो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। जंजीर फिल्म से सुनाते हैं आपको ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, गुलशन बावरा के बोल, तर्ज बनाइए कल्याण जी आनंद जी ने।
3: मैं जो थोड़ी सी जगह मिल

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में युगल स्वर में आपको सुनवाते हैं गुलशन बावरा का लिखा गीत, आर जी बर्मन का संगीत बद किया, फिल्म का नाम कस्मी वादी।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती।
4: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
5: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
4: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
5: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
4: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: मिस्टर नटवरलाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

आज आपने ये कार्यक्रम सुना हम है राही प्यार की अमिताभ बच्चन के गीतों से सजा हुआ ये कार्यक्रम था और इसी गीत के साथ कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी IIT मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
3: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है।

0: स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
2: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
2: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
4: सर मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं। इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ऐसी जो लॉजिस्टिक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा।
2: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदर गांव आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: दाँत खाँच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन,
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख

0: तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
2: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मंह मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मादोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार। दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक

0: सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है। कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, एनआईए को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिलीस राय। मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही

0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार, मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटी माता पिता के जीवन में रंग भरती है और घर को अलहड़ शरारतों से गुलजार करती है। उसके होने से मन को सुकून मिलता है। गहरी तकलीफ में वो हौसला बनाती है और उसकी खिलखिलाहटें दर्द में भी हंसने का बहाना देती है। घर को सचमुच घर बनाती है बिटिया। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो क्या उसे देखकर हम ये कहते हैं, उसकी बातों में शहद सी मिठास, उसकी सांसों में इतर की महकास, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके अनार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या बेटी के जन्म लेने पर हम उतने ही खुश होते हैं जितना बेटे के जन्म लेने पर? बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियों के आने पर बाह पसार कर उनका स्वागत कीजिए।

हमारे देश में बालिका को कितने ही रूपों में पूजा जाता है। नन्ही बच्चियों को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और विवाहित बेटी को पार्वती का। हर प्रतीक, हर रूप के पीछे न जाने कितनी कथाएं और कितनी आस्थाएं हैं, पर वास्तविक जीवन में कई बार हम इस शक्ति को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बालिका शक्ति स्वरूपा भी है और भविष्य में सृजन का आधार भी। बच्चों की परवरिश बच्चों की तरह होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। माता पिता के शब्द और व्यवहार बच्चियों की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लड़की और लड़के के जन्म के बाद परिवार में दोहरी मानसिकता देखी जाती है, चाहे बात खान पान की हो, शिक्षा की हो या खेलने की। लड़कों के साथ अलग व्यवहार और लड़कियों के साथ अलग। हालांकि इस मानसिकता में कुछ हद तक बदलाव आया है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी।

के प्रति गंदी सोच रखना, लिंग भेद करना और उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना, ये बातें हमें झकझोर देती है या छलावा लगती है। बेटियां पराया धन नहीं है, उन्हें पढ़ाएं फिर देखें वो अपनी राह खुद बना लेंगी। जब बेटियों की थालियां और बस्ते बेटों के समान सजते हैं तो अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। खेल के मैदान गवाह हैं कि जाने कितनी बार देश का मान बेटियों ने बढ़ाया है। राजनीति, कॉरपोरेट, शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी पताका फहराई है, तो फिर हम बेटी के आगमन पर खुश क्यों नहीं होते। आइए आज के दिन हम ये प्रण लें कि रूढ़ियों को तोड़कर लड़के और लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ाएं, लिखाएं और करियर के अवसर दें, मुसीबत में उनका साथ दें, उनके कौशल को निखारें, उन्हें प्रशिक्षित करें और आत्मनिर्भर

0: पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
4: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
4: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
3: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
5: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
6: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
5: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
6: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
7: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

श्रोताओं कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का स्वागत है। सुबह की ताजगी और नए सुरों की सौगात के साथ नए गानों के कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं पूजा नरानिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगी देश के नाम इस गीत के साथ।

सेम बहादुर फिल्म का गीत शंकर महादेवन, विशाल डडलानी और दिव्य कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत था और भारत माँ की जय के साथ में माता के नौ रूपों को नमन कर रहे हैं हम। इस गीत के द्वारा भी हमने ये बात सुनी। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का शुभारंभ हो चुका है श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए माँ दुर्गा के नौ रूपों को नमन करते हैं और सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं और ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: उषा उत्थप और साथियों के स्वरों में माँ फिल्म का गीत ये आप सुन रहे थे। प्रणव वत्स ने इस गीत के बोल लिखे थे, हर्ष उपाध्याय ने संगीतबद्ध किया था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा

विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रामलीला फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में। सिद्धार्थ गरिमा के बोल हैं, संजय लीला बंसाली का संगीत।

0: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
1: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन हर बेटी के सपनों को पंख देने और उसे आत्मनिर्भर बनाने का संदेश है।

मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अल्तमश फरीदी की आवाज में। कौसर मुनीर ने इस गीत की रचना की थी, धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने।

जी हाँ, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये गीत भी बेटियों बालिकाओं के नाम था। फिल्म का नाम था जननेता। कृष्ण चैतन्य की आवाज थी। रितेश राव ने इस गीत को लिखा था। अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत था। श्रोताओं, आज महाराजा अग्रसेन जयंती भी है। महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें याद कर रहे हैं। समाजवाद, समानता, अहिंसा और जन कल्याण के आदर्शों के लिए उन्हें याद किया जाता है। आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 11 अक्टूबर को हम याद करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और लोकतंत्र के सजग प्रहरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जिनका जीवन देश सेवा, सामाजिक न्याय और जनशक्ति में विश्वास का प्रतीक रहा। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत जन

0: मानवता की जागरूकता उसके अधिकारों और उसकी भागीदारी में निहित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को विनम्र श्रद्धांजलि।
1: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
2: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
1: मीना कुमारी।
3: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
1: जीवन।
4: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
1: देव आनंद।
5: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। अर्जुन सूरी की आवाज में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। सोनू सागर ने इस गीत को लिखा है, विनय विनायक ने संगीतबद्ध किया है।

0: अच्छा है। सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: श्रोताओं, दमदार आवाज, बेमिसाल अदाकारी और शहंशाह वाले अंदाज के लिए मशहूर महानायक अमिताभ बच्चन, जो आज भी उतने ही सक्रिय और लोकप्रिय हैं, उन्हें जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। इसी खास मौके पर सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत। समीर के बोल है आदेश श्रीवास्तव का संगीत, कभी खुशी कभी गम फिल्म का नाम।
1: हां जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4।
0: अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले की आवाज़ें। साथ ही आवाज है अमिताभ बच्चन की।

0: कॉकटेल टू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे प्रीतम अरिजीत सिंह अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया था इस गीत को प्रीतम ने। अब कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: मैदा टीका ला लिया और तू भी ला ले।
2: नहीं यार मैं नहीं लौना।
1: ऐ तो फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: आज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति विनोद राठौर करसन सग सरगठिया की आवाज में महबूब के बोल हैं।

0: कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, करसन सरगठिया और साथियों के स्वरों में ये गीत आपने सुना हम दिल दे चुके सनम फिल्म से।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब जिद पे आ गई
3: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिल

0: दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की, और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। जरूर सुनिएगा। और अब कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

लव यात्री। इस फिल्म का गीत देव नेगी योयो हनी सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्बीर अहमद, योयो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला ने इस गीत को लिखा था, तनिष्क बागची ने तर्ज बनाई थी। और अब इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा। पूजा नारायणिया को नमस्कार और साथ ही आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

0: और आप सुनते रहिए विविध भारती।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: घर से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। रेडियो पर आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी साथ साथ चल रहा है। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आज का अखबार।
3: नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर आपके साथ आपका साथी है अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में हम आपके साथ रहते हैं। आपको मालूम ही है अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते हैं। और लेकिन आज के दिन की बात करें, आज से शारदीय नवरात्र जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। इस पावन मौके पर, शुभ मौके पर सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के दिन प्रथम शैलपुत्री की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। भक्तजन सुबह से नतमस्तक हैं, तैयारी में हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और शैलपुत्री की पूजा में लीन है, जप तप में लीन है भक्त जन। नवरात्र के प्रथम दिन देवी के उपासक घट स्थापना अखंड ज्योति प्रज्वलित कर माता के प्रथम चरित्र का पाठ कर मंगल फल प्राप्त करेंगे। और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी, तो उधर से शारदीय नवरात्र हैं, तो जो माँ है, जो बालिका है, छोटी जो बच्ची है, नन्ही परी है घर की, उसे माँ के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएं कि किस तरह से देश भर के जो मंदिर हैं वो सुसज्जित हैं और वहाँ जो हैं सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं भक्त जनों के लिए। सबसे पहले माता मनसा देवी की बात करें तो आधी रात से लगी लाइन है यहाँ। कपाट खुलते ही भक्तों ने किए माँ के दर्शन। श्री माता मनसा देवी कालका मंदिर में नवरात्र पर भव्य सजावट की गई, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस तरह से साथ साथ अगर हम बात करें तमाम शक्तिपीठों की, तो शारदीय नवरात्र के लिए हिमाचल की शक्तिपीठ सज चुकी है। माँ नयना देवी, छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी, ज्वालाजी ब्रजेश्वरी और चामुंडा मंदिर को भी विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रविवार से 9 दिन माँ के 9 रूपों का विशेष पूजन होगा। इस बार 19 अक्टूबर को अष्टमी, नवमी के अनुष्ठान हो सकेंगे। श्री नैना देवी मंदिर के कपाट 21.5 घंटे खुले रहेंगे। रात 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। 5 पहर की आरती होगी। लाउड स्पीकर, ढोल, नगाड़े, बैंड और इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कांगड़ा की तीनों

मुख्य शक्ति पीठों के कपाट सुबह 5 बजे खोल दिए जाएंगे, खुल चुके हैं। वहीं ज्वालामुखी में छठी, सप्तमी और अष्टमी को मंदिर 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहेगा। नवरात्र के मद्देनजर ज्वालामुखी मंदिर परिसर को 51 क्विंटल देसी विदेशी और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। इसके साथ साथ बात करें मिर्जापुर की, विध्यांचल विंध्यवासिनी के दर्शन QR कोड से होंगे और ये मेला यहाँ शुरू हो चुका है। 24 में से 21 घंटे भक्तों को दर्शन देगी माँ। माँ के श्रृंगार के समय दर्शन बंद रहेंगे। इस तरह से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन QR कोड से होंगे। ये मिर्जापुर की बात है। बात करें जम्मू की तो कटरा में कल से गूंजेगी माता की कहानी, वैष्णो माता की कहानी। इस पर आधारित भव्य संगीतमय नाट्य प्रस्तुति माता की कहानी देखने का मौका मिलेगा भक्तजनों को। माता की कहानी को माँ वैष्णो देवी की पौराणिक गाथा पर आधारित पहली नाट्य प्रस्तुतियों में से एक बताया गया है। इसमें अभिनय, संगीत, नृत्य के माध्यम से माता की दिव्य यात्रा को दर्शाया जाएगा। इस प्रस्तुति में कलाकारों, तकनीशियों और डिजाइनरों की टीम ने योगदान दिया है। इस तरह से नवरात्रों में पूरी तरह से माँ के दर्शन के लिए भक्तजन लीन रहेंगे, मदमस्त रहेंगे, पूजा अर्चना में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। और वैसे भी दोस्तों, ये जो शारदीय नवरात्रे हैं वैज्ञानिक रूप से भी बड़ा ही महत्व रखते हैं, आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से भी। और आस्था के साथ साथ हम किस तरह से एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश करते हैं, जैसे गर्मियों में सर्दियों से प्रवेश करना है, तो किस तरह से अपने तन मन को हमें कंट्रोल में रखना है, उसे संभालना है, आराधना के द्वारा, आस्था के द्वारा और जप तप से। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण शारदीय नवरात्रों का। तो इस मौके पर सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय माता दी।

और आज है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती, इस पर शत शत नमन है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय और एकता का प्रतीक है। सद्भावना और आपसी भाईचारे का उनका संदेश देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। और प्रोग्राम में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइन। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल SSOC ने फिरोजपुर से पाकिस्तान को गोपनीय सूचना भेजने के आरोप में गुरनूर सिंह नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। फौजी पति देता था सैन्य गुप्त जानकारी। पहली बार एशियंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का पंजाब मेजबान, यानी पंजाब मेजबानी कर रहा है। 27 अक्टूबर को शुरुआत हो रही है। 20 साल बाद जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच। दुनिया के 2% टॉप 2% वैज्ञानिकों में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के 15 प्रोफेसर्स को मिली है जगह। गुरदासपुर में एक हादसा हुआ है, कार में लगी भीषण आग, डिपो होल्डर सनी भगत की मौत हो गई। सुल्तानपुर लोधी में खेड़ा वतन पंजाब दिया में क्याकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता शनिवार को शुरू हो गई। ग्रुप डी कर्मियों को तोहफा, दिवाली पर ₹10,000 बिना ब्याज मिलेंगे पंजाब में। और शारदीय नवरात्र में दुर्गयाणा मंदिर में श्री बड़ा हनुमान मंदिर से प्रसिद्ध लंगूर मेला शुरू हो गया। पंजाब के बाद हरियाणा की बात करें तो कैबिनेट का फैसला है, हरियाणा कैबिनेट का, कि माइनिंग गार्ड पद अपग्रेड होंगे। हर हित स्टोर नीति में बदलाव होगा। अग्निवीरों की बिना परीक्षा ग्रुप सी में भर्ती होगी। लाडो योजना में अब 3 माह में सत्यापन। हरियाणा में सड़क की शिकायत 10 दिन में नहीं निपटी तो जवाबदेह होगा अधिकारी। पीपीपी से डिजिटल सेवाओं तक अब तक विभाग संभालेगा पूरा तंत्र। CRID स्वतंत्र विभाग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा के 18 दौरों से प्रदेश की 86,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पंजाब हरियाणा के बाद अब हिमाचल की बात करें। हिमाचल में 14,000 पद भरने को हरी झंडी। ऊना में हादसा, 3 साल के मासूम समेत दादी की मौत, 6 घायल हो गए। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही रितु नेगी को हिमाचल देगा 1 करोड़, बाकी खिलाड़ियों के साथ साथ। और नवरात्र के लिए सजा मां चिंतपूर्णी का दरबार।

रात भर होंगे दर्शन बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस।

0: अब यहां रुकते हैं, इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपके लिए म्यूजिकल नंबर।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
3: ऐ ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम आज का अखबार आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट पर आप ये कार्यक्रम हमारे गजौरी ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं और हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR साथ में प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है। अब यहाँ एक म्यूजिकल नंबर आपके लिए प्ले करते हैं, उसके बाद मिलते हैं लोकल हेडलाइंस लेकर।

वेलकम बैक दोस्तों, अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। सबसे पहले चलते हैं माता मनसा देवी पंचकुला। आधी रात से लगी लाइनें, कपाट खुलते ही भक्तों ने किए मां के दर्शन। श्री माता मनसा देवी कालका मंदिर में नवरात्र पर भव्य सजावट की गई है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

चंडीगढ़ के मंदिरों में कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन कीर्तन और सामूहिक आरती होगी। और हाँ दोस्तों, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज आखिरी मौका है। 4 दिन में फॉर्म 6 के करीब 3,100 आवेदन बूथों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगे शिविर। 22 सितंबर को प्रकाशित हुई थी अंतिम सूची। चंडीगढ़ के सभी मतदान केंद्रों पर 7 से 11 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान का आज आखिरी दिन है, मौका है।

मनीमाजरा के पिपली वाला टाउन की बात करें तो मैदान की सफाई यहां शुरू हो चुकी है। बच्चों के खेलने का मैदान और पार्किंग बनेगी। मनीमाजरा में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। स्वच्छ मनीमाजरा का संदेश दिया गया। नवरात्र में वजन घटाना हो या बढ़ाना, सरकारी होम साइंस कॉलेज में मुफ्त मिलेगा डाइट प्लान। डायबिटीज, बीपी और हृदय रोगियों को भी खान पान संबंधी सलाह दी जाएगी। मंगलवार और बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलेगी डाइट क्लिनिक। घर बैठे ईमेल पर मिलेगा डाइट प्लान। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का निर्माण तेज, 75% वायाडक्ट तैयार। सुखना चो पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण, अगले महीने से साल भर में दौड़ेंगे वाहन। पंचकूला मनसा देवी आईटी पार्क, मनीमाजरा और सेक्टर 26 को मिलेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी। पीक आवर्स में जाम, बरसात में बंद हो जाता है रास्ता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

0: 17 अक्टूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्कृति और नशा मुक्ति का संदेश। आप सुन रहे हैं लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब यहाँ छोटा सा अंतराल।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
2: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: कुछ और लोकल हेडलाइंस हैं आपसे शेयर कर दें। सितंबर में एक QI ही 35.4। आज बदलेगा मौसम, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 30 में से 25 दिन चंडीगढ़ की हवा अच्छी रही। ट्राई सिटी में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट बताया गया है। अगले 3 दिन मौसम बदलने के आसार बताए गए हैं। SIR और वोट चोरी के आरोपों पर आपका प्रदर्शन हुआ चंडीगढ़ में, पुलिस से धक्का मुक्की। PGI की

डॉक्टर कुसुम शर्मा को वुमेन इन मेडिसिन अवार्ड दिया गया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत की पहली डिजिटल क्लिनिक शुरू। एआई बताएगा पैरों की सेहत का हाल, पैरों की सेहत का हाल बताएगा एआई। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: और साथियों हम आपको बता दें कि नौसेना को मिला पोत श्रेयस, रुकेगा समुद्री डकैती और घुसपैठ। समुद्र में गश्त करने वाला अत्याधुनिक पोत श्रेयस शनिवार को नौसेना में शामिल हो गया। ये भारतीय नौसेना के लिए रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे अगली पीढ़ी के चार अपतटीय गश्ती पोत में से तीसरा है। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत पहले बने ऐसे ही जहाजों की तुलना में काफी बड़े और अधिक सक्षम हैं। उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियां बच नहीं पाएंगी। तो ये है नया पोत श्रेयस, रुकेगा समुद्री डकैती और घुसपैठ का मामला। और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस मौके पर 10:05 पर हम ले आएंगे हेलो चंडीगढ़ में टॉपिक, बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान। ये है हमारा आज का टॉपिक। आज का अखबार प्रोग्राम खत्म करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, नवरात्रि के पावन मौके पर एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी चंडीगढ़ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
0: आप सुन रहे थे

0: ये आज का अखबार कार्यक्रम ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूर्णमल्ली बाईपास स्टेशन से पूर्णमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कामना की है कि नवरात्रि का पर्व राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका व्यक्तित्व और संदेश पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान उनकी निर्भीक आवाज को याद किया। उन्होंने कहा कि वे सुशासन और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्य अवधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस जारी संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। साउथ अमेरिका के शहर टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान इस सोच के साथ और कदम उठा सकता है, इससे अमेरिका को राजनीतिक नुकसान होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज के साथ तूफान और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, एसबीआई देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। एसबीआई, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

0: और साथियों लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम में 11 बजे तक आपके साथ रहेंगे। आपको मालूम है, जब भी हम मिलते हैं किसी ना किसी टॉपिक पर बात होती है, लेकिन आज का दिन विशेष है और आज का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन बेटियों के बारे में बात करेंगे, लाडों के बारे में बात करेंगे, घर की रौनक के बारे में बात करेंगे, बाहर के बारे में बात करेंगे। और आज से ही शारदीय नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं। पहले इस मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। और देखिए, हमारी परंपरा में तो शारदीय नवरात्रों में बेटी को, बिटिया रानी को पूजा जाता है, कंजकें बिठाई जाती हैं, उनका आदर सम्मान किया जाता है। और हमारे यहाँ माँ के कई रूप हैं, वो दुर्गा भी है, वो शेरों वाली माता भी है। अलग अलग जो रूप हैं शक्तियों के, हम उन्हें महिला सशक्तिकरण में देखते हैं। तो हमारी परंपरा में बेटी का स्थान अव्वल रहा है, सर्वोच्च रहा है। तो आज इस मौके पर आपके विचार क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके घर में नन्ही बेटी किस तरह से आपके घर की शोभा बढ़ाती है, रौनक बढ़ाती है, इन तमाम बातों के बारे में आप बातें कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान। ये टॉपिक है हमारा और नंबर्स वही हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को डायल करना है। और ये सुनिश्चित करें कि बात करने से पहले कि आप प्रॉपर एक स्थान पर खड़े हों जहां नेटवर्किंग सही तरीके से हो, आवाज़ कटे ना, आपकी आवाज़ तमाम सुनने वालों तक स्पष्ट रूप से पहुंचे और हम तक भी, क्योंकि आप कहेंगे तभी हम कुछ कहेंगे और ये कारवां आगे बढ़ेगा। हमारे श्रोता आ चुके हैं, अब इसी का इंतज़ार था।

0: और सिलसिला शुरू होता है बातों का, विचारों के आदान प्रदान का। हेलो चंडीगढ़, नाम बताइए जी, जगह का नाम बताइए।
1: नमस्कार जी, अनिल पुंजी गांव जी गुड़ी से जी।
0: जी नमस्कार जी।
1: रणधीर बांगड़ जी।
0: जी
1: कैसे हैं जी? अनिल पुंजी।
0: रणधीर जी आपका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं, आज आपकी पहली कॉल आई।
1: हाँ, आपको नवरात्रों की माँ दुर्गा की बधाइयां जी।
0: जी
1: और ये बेटियों के बारे में जो आपने विषय रखा ना जी, ये घर की लक्ष्मी होती है सर जी, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा जी।
0: जी
1: जिस घर में बेटी नहीं है वो घर सोना सोना सा लगता है जी।
0: जी जी जी जी जी
1: हाँ। अरे एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है जी।
0: जी
1: मैं तो पत्थर जी,
0: आप इस प्रोग्राम में रणधीर जी इस प्रोग्राम में आपके जो पत्र मिल जाते हैं, लेकिन सिलसिलेवार हर पत्र की जो बारी आती है, सप्ताह में एक दिन होता है फरमाइश का, तो हर बार शामिल नहीं भी हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे पत्र आते हैं।
1: जी
0: तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए ना, अपने घर के बारे में बताइए, आपके परिवार में।
1: जिस बार घर में लक्ष्मी नहीं है जी, वो घर सोना सोना सा लगता है जी सर जी।
0: तो आप हरियाणा राज्य से हैं, हरियाणा तो भाई हरियाणा की बेटियों ने तो
1: जी
0: हरियाणा की छोरियों ने तो कमाल किया भाई।
1: हाँ जी बहुत इनका नाम है जी खेलों में जिनका
0: जी, एशियन गेम्स में भी एक अलग जगह बनाई है बेटियों ने।
1: तैयारी जी हमारे हरियाणा की लड़कियां जी।
0: जी जी जी
1: तो पर हम तो इनको और परिवार भी हमारा बहुत बड़ा जी, हमारा तो लड़की ही बहुत है जी।
0: जी जी जी जी
1: हाँ, उनकी दुआ से हमारा अच्छा मतलब घर परिवार में सुख शांति है जी।
0: बहुत अच्छी बात है, जहाँ बेटियों का वास होगा, जहाँ बेटियों का सम्मान होगा, वो घर खुशहाल होगा।
1: हाँ जी, परिवार काफी बड़ा,
0: वो समाज खुशहाल होगा,
1: दिक्कत नहीं है सर जी।
0: जी जी जी
1: हमको जी।
0: तो रणधीर जी, आज का जो दिन है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, वैसे हमारा जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन 11 अक्टूबर का जो दिन है वो दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये जो दिन है
1: सम्मान के लिए जी,
0: हाँ,
1: हम इनके उद्दान के स्थान के लिए मनाया जाता है जी।
0: और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के प्रति लोगों की सोच को बदलना है, हालांकि ये सोच बहुत बदल चुकी है।
1: हाँ जी बहुत सर जी,
0: उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
1: आप हमारे लड़कियों एक डेढ़ महीना पहले जी हमने बहुत खुशी मनाई जी इनके।
0: अच्छा
1: अभी हुई थी एक डेढ़ महीने की, हमारी पोती हरी जी बहुत खुशी मनाई जी, उसका बहुत सम्मान करा जी, मिठाइयां बांटी जी।
0: जी जी जी जी जी
1: महसूस नहीं करा जी बिल्कुल भी सर जी।
0: हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ जी, आपसे बात करके दिल को खुशी मिली जी।
0: रणधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बस मेरी
0: इसी तरह से अपना प्यार
1: करो सर जी,
0: इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज, है ना रणधीर जी?
1: हाँ जी हाँ जी,
0: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और 11 तारीख है ये, 11 अक्टूबर है, और आज ही सदी के महानायक जो हैं अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो उनके भी जो करोड़ों प्रशंसक हैं देश विदेशों में, वो सब आज उन्हें मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कह रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, हम भी शुभकामनाएं देते हैं। और मौका है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, बालिका दिवस का, तो उन्हीं की एक फिल्म है कभी कभी, उसी का एक गाना है मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत प्यारा गीत है जी सर।
0: चलिए फिर सुनते हैं ये गाना और अपनी अपनी बच्चियों को, अपनी अपनी लाडों को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं ना।
1: धन्यवाद सर जी आपसे।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में हमारा विषय है बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ये नारा बहुत पहले से दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी शिक्षित होगी तभी पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश जो है वो शिक्षित होगा। हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन है। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं, जगह का नाम बताएं।
2: राजेश कुमार चौहान जालंधर से।
1: राजेश कुमार चौहान जालंधर, कहाँ से चौहान भाई?
2: हरगोविंद नगर है ये, पठानकोट भाई बात के बाद।
1: जी जी जी, चौहान जी क्या हाल चाल है आपके?
2: बढ़िया सर, आप सुनाइए।
1: बहुत बढ़िया, सुनते रहते हैं इस प्रोग्राम को या आकाशवाणी चंडीगढ़ को?
2: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो अब इस पे चलता है, ऐप पे चलता है।
1: अच्छा, ऐप पे आपको मिलता है?
2: हाँ जी हाँ जी, ऐप पे सुनते रहते हैं इसको।
1: जी, तो रेडियो पर कभी लगाने की कोशिश किया आपने, रेडियो सेट पर?
2: रेडियो तो आएगा नहीं ना इतनी दूर से, जल्द अरे नहीं आएगा ना।
1: अरे ऐसी बात नहीं, आप लगा के देखिए, हमारी रेंज बहुत अच्छी है। अच्छा। ये आप जो हमारे ये कार्यक्रम है रेडियो पर, हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं।
2: ठीक है सर, करूंगा कोशिश।
1: कभी कोशिश करें, अपनी गाड़ी में करें या घर में करें, और हमें बताएं कि आप तक ये मिलता नहीं मिलता। ऐप पे तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है ये प्रोग्राम।
2: हाँ जी हाँ जी, इससे तो सभी।
1: तो चौहान साहब, बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान, क्या कहना चाहेंगे?
2: सर मैं यही कहना चाहूंगा, देखो आज कितना बढ़िया दिन आ गया, बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और नवरात्रे।
1: हाँ,
2: तो ये दोनों बेटियों से संबंधित है।
1: बिल्कुल है जी।
2: और मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जो नवरात्रे कर रहे हैं या मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, उनको तो अपने दिल में जरा सी भी बेटियों के प्रति नफरत कैसे हो या भेदभाव की भावना तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
1: जी,
2: अगर हम व्रत करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे और बेटियों के प्रति संकल्प तो मानसिकता रखेंगे, तो मेरे को लगता है कि माता रानी इससे तो नहीं खुश होगी।
1: जी,
2: तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे अपने आप को पहले साफ करो, बेटियों के प्रति अच्छा रखो, व्यवहार रखो, और बेटों के समान ही बेटियों को अधिकार देने चाहिए।
1: जी जी जी जी,
2: जैसे बेटों को देते हैं वैसे बेटियों को देने चाहिए। अब मेरी भी सर दो बेटियां हैं, तो मैं ये तो उनको अपने लड़कों से भी ज्यादा, बेटों से भी ज्यादा समझता हूँ, और उनको पढ़ाई भी बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे बेटों की करवाते हैं। हाँ जी सर,

0: तो देखिए हमारे समाज में हमारी भारतीय परंपरा में बेटियों को सर्वोच्च स्थान मिलता रहा है।
1: सर मैं एक एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बेटियों के प्रति इस करके भी नफरत या कह सकते हैं भेदभाव की कि लोगों के तान जो तानने होते हैं कि आपकी बेटियां हैं आपके बुढ़ापे में सारा नहीं बने बनेंगी या आपका सारा कौन बनेगा। मैं तो यही कहूँ कि आज बेटे कितने प्रतिशत जो है बेटे सारा बन रहे हैं माँ बाप के।
0: हाँ तो बेटे की कौन सी गारंटी है?
1: वही मैं कह रहा हूँ ना सर,
0: इसमें वही बात फिर आगे बेटा या बेटी की बात नहीं है। जिस बच्चे के अच्छे संस्कार होंगे
1: बिल्कुल
0: वो बच्चा अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएगा चाहे वो बेटा हो या बेटी हो।
1: बेटी बिल्कुल सर बिल्कुल।
0: तो अगर आप दोनों का पालन पोषण समान रूप से करेंगे उनको सम्मान अवसर देंगे तो बेटियों को भी सोचने का समझने का आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या गलत है क्या ठीक है वो जान पाएंगी।
1: आज हमारे देश की देखो बेटियां कहाँ कहाँ नाम कर रही हैं। आसमान ठाकुर ने नाम किया है खेलों में ना, अभी पीछे देखो जो एशियन गेम हुई इसमें बेटियों ने कितना अच्छा नाम किया।
0: बिल्कुल हिमाचल की बेटियां हों हरियाणा की हों पंजाब की हों क्रिकेट हो हॉकी हो कबड्डी हो वेट लिफ्टिंग हो।
1: हाँ जी सर हिमाचल की मैंने एक बेटी का ऐसा भी सुना है कि वो काफी दूर दराज के एरिए की थी क्षेत्र की थी तो उसने भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया।
0: जो कबड्डी की बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी सर।
0: ऋतु नेगी करके हैं।
1: हाँ जी देखो कहाँ से अपनी बेटियां कर रही हैं तो कुछ लोग तो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। अभी देखते हैं कि 20 साल की हो गई 18 साल की हो गई अपना शादी कर दो अपना पल्ला झाड़ लो। तो मेरे को लगता है कि बेटियों को जाओ अपना वो कैरियर बनाना चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं उनको मौके देने चाहिए उनके जो और उनके पूरे करने चाहिए।
0: सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं भारत सरकार की भी राज्य सरकारों की भी। भारत सरकार की बात करें तो जो बालिका समृद्धि योजना है उसमें आप को सरकार जो है मदद करती है कुछ सर, आप सरकार? अपनी तरफ से योगदान देते हैं कुछ सरकार करती है?
1: हाँ जी सर सरकार तो बहुत कोशिश करती है पर सरकार की जो भी योजनाएं वो तभी कामयाब होगी जब हम लोग उसमें पूरा योगदान अपना देंगे।
0: जी और आज देखिए बात होती है बचत की निवेश की है ना।
1: हाँ जी
0: तो हमें निवेश अपनी बच्चियों के शिक्षा के लिए करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए।
1: हाँ जी एक और है जो महिलाएं हैं ना वो भी इस मामले में पीछे नहीं है बेटियों से भेदभाव करने में तो मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ। महिला कोई पुरुष है अगर कोई बेटी नहीं होती आपकी जो माँ है वो भी किसी की बेटी है अगर वो ना होती तो क्या हम संसार में आ पाते।
0: बिल्कुल सही है। देखिए एक जो लड़की है एक जो बच्ची है वो अपने जीवन में अलग अलग रोल अदा करती है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है और उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है इसलिए उसका पढ़ना लिखना उसका अच्छा स्वास्थ्य होना ये बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी सर आजकल का जो टाइम है तो वैसे तो हम लोग दे रहे हैं मौके दे रहे हैं बेटियों को अब तो काफी आगे बढ़ रही हैं बेटियां भी पर अभी भी ना बहुत कम लोग ऐसे होंगे तो बेटियों को ये करते हैं कि नहीं आगे करने नहीं देना ये नहीं करना। हमारी बेटियां देखो कहाँ कहाँ जा रही हैं कहाँ नौकरी कर रही हैं दिन रात की नौकरी कर रही हैं दे रहे हैं लोग कर रहे हैं बढ़ रहे हैं सोच बढ़ रही है लोगों की पर अभी भी कुछ कमी
0: तो मैंने यही कहा था ना कि सोच कैसी भी हो सोच अब तो बदली है लेकिन अगर पुरानी सोच की बात करें तो उस सोच के दौर में भी हमारे कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने रास्ता दिखाया लड़कियों को पढ़ना पढ़ाना लड़कियों को आगे रखना। अगर हम समाज सुधारकों की बात करें तो बहुत पंडित मालवीय हैं कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र में लगाया। आर्य समाज के जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया महिला सशक्तिकरण का सबसे पहले कि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी है।
1: अब देखो सर कोई टाइम था तो सती प्रथा थी हमारे समाज में तो उसका भी अंत हुआ ही है तो ऐसे जो अब हाँ जी सती प्रथा थी तो
0: और चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सर।
2: घर का सपना हो नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम ऑटो पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: वेलकम बैक दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और

0: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि आज भी 133 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में अपने पुरुष साथियों की तुलना में शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल ना होने की संभावना अधिक होती है। लगभग 10 से 4 किशोरियां और युवतियां उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं। 15 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 4 से एक विवाहित या पार्टनर के साथ रहने वाली किशोरियों ने अपने जीवन काल में अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया है और इस तरह से इन तमाम चुनौतियों को पार पाना है, इनसे बाहर निकलना है और इसके लिए हम सब का साथ और सोच, एक सही दिशा में सोच जो है वो बहुत ही जरूरी है। हेलो चंडीगढ़
1: नमस्कार जी।
0: जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो,
0: आपने रेडियो सेट को थोड़ा।
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं रेजिया बात कर रही हूँ रेड कोटला से सर।
0: क्या नाम बताया जी?
1: हेलो सर।
0: हाँ जी, का आपकी।
1: हाँ जी, नमस्कार सर।
0: आप अपने रेडियो सेट
1: सर,
0: को
1: बेटियों के लिए जी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: आप अपने रेडियो सेट को सबसे पहले बंद कीजिए।
1: बंद कर दिया सर, वो तो किचन में पड़ा अब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी।
0: तो
1: सर,
0: अब बताइए सबसे
1: तो
0: सबसे पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: जी सर, मैं रजिया बात कर रही हूँ मलेरकोटला से।
0: रजिया जी, मलेरकोटला से। जी
1: जी सर,
0: आपका स्वागत है रजिया जी।
1: जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जो बेटियों से डरते हैं ना, वो बहुत बुरे लोग हैं।
0: जी
1: जी, मेरे सर दो बेटियां हैं और दोनों ही मेरिटोरियस हैं।
0: जी
1: जी, और बतौर टीचर काम कर रही हैं देश के लिए भी।
0: वेरी गुड,
1: और बच्चों के लिए भी।
0: जी जी जी जी,
1: मैं भी एक टीचर रही हूँ सर।
0: अच्छा।
1: मेरे फादर ने बहुत मेहनत से हमको तीनों बहनों को पढ़ाया, हम भी तीन बहने हैं सर।
0: जी,
1: वो मतलब के ऐसे थे कि बॉडी बिल्डर थे मेरे फादर, पर उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए अपना कैरियर खत्म कर दिया।
0: जी
1: जी, तो मैं चाहती हूँ कि सर बेटियों को पढ़ाना लिखाना तो इतना जरूरी है, चाहे आप अपने लड़कों को पढ़ाए लिखाएं या ना पढ़ाए, पर बेटियों के लिए बहुत जरूरी है पढ़ाना लिखाना।
0: जी जी जी जी,
1: आज मुझे फक्र होता है अपने आप पर जब लोग मुझे अब मेरी बेटियों के नाम से जानते हैं।
0: वाह क्या बात है।
1: हाँ जी,
0: और रजिया जी आपकी बात में एक फक्र नजर आ रहा है।
1: जी बहुत ज्यादा सर, आप देखोगे नहीं कि मेरे घर में एक रूम है, वो सारा रूम मोमेंटो से भरा हुआ है सर। तो देख के इतनी खुशी होती है जब कोई आता है हमारे घर में भी, अच्छा इतनी प्राइज आपकी बेटियों ने जीते हैं।
0: जीती है
1: स्टडी में, अकेडमी में सर।
0: उसकी वजह रजिया जी आप हैं।
1: जी,
0: आपका परिवार है और आपके अब्बा हैं।
1: नहीं सर, और जो हमारे इन-लॉज परिवार है वो भी बहुत बढ़िया है।
0: जी जी जी जी
1: जी, मेरे मतलब के जो जेठ हैं उनके भी चार बेटियां हैं।
0: जी,
1: मेरे दो बेटियां हैं, पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर में बच्चा नहीं है या लड़का नहीं है।
0: जी,
1: और छह की छह इंडिपेंडेंट है, अपना कमाती हैं और हमें भी मतलब के साथ में खिलाती हैं, ऐसा समझ ले।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। देखिए, पढ़ने लिखने के बाद अपनी बच्चियों को एक सम्मान देने के बाद उन्हें आपने शिक्षक बनाया।
1: जी,
0: और आज
1: है मेरी बच्चियां स्टडी में।
0: जी जी,
1: उनको मतलब के दिल्ली में और पटना में गोल्ड मेडल मिला है।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
1: हाँ जी, तो जब स्कूल में भी आज मैं जाती हूँ इन बच्चियों के जहाँ ये पढ़ाती हैं, तो मतलब इतना गर्व महसूस होता है अपने आप पर।
0: क्या
1: बात, अल्लाह तूने बहुत अच्छा किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मुझे बेटी भी।
0: और देखिए सबसे बड़ी बात है रजिया जी, आप जो ये सब बातें कह रही हैं मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि किस तरह से आप प्राउड फील कर रही हैं अपनी लड़कियों पर।
1: सर, मैं आने वाले लोगों को जिनके बेटियां हैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ दें, उनको उड़ान दें।
0: जी जी जी
1: जी,
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत रजिया जी बात करने के लिए।
1: जी सर,
0: और आपने जो ये नेक काम किया है, बेटियों को पढ़ाया है, लड़कियों को पढ़ाया है।
1: जी सर,
0: आपने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपने केवल समाज के लिए नहीं, बल्कि

0: देश के विकास में अपना योगदान दिया रजिया जी?
1: बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बच्चियों से, अपने देश से सर।
0: जी खुदा से दुआएं करेंगे कि आप पर कर्म बनाए रखे।
1: जी सर थैंक यू जी,
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।

तो साथियों आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक है कि बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान। आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।

0: इस मौके पर हमने ये टॉपिक चुना आपके लिए। नंबर से एक बार फिर से आपको बता दें, 2660615, 2660617 और 2660619। अब आगे बढ़ने से पहले इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं इस प्रोग्राम में।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
0: बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान। और आज बच्चियां हमारे देश की लड़कियां देश की शान बन रही हैं, देश का तिरंगा लहरा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चाहे एशियन गेम्स हों, जहां कहीं मौका मिले, क्रिकेट की दुनिया हो, हॉकी की दुनिया हो, वेट लिफ्टिंग की दुनिया हो, कैसा भी खेल हो, कोई सा भी ट्रैक हो, हर ट्रैक पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं हमारे देश की लड़कियां। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
0: जी, वेलकम जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
4: मैं रितु सभरवाल बोल रही हूँ, सेक्टर 51 से।
0: रितु सभरवाल
4: नहीं जी, रेनू सभरवाल।
0: रेनू सभरवाल जी,
4: हाँ जी, आपसे बड़ी बड़ी बात है।
0: क्या हाल है आपके?
4: हाँ जी, आज तो बड़ा अच्छा, वैसे तो टॉपिक सारे ही अच्छे होते हैं, पर मेरे घर में भी एक नन्ही परी है।
0: हाँ,
4: और सबसे पहले तो शरदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं सबके लिए। माता रानी बहुत अच्छे अच्छे उनकी फैमिली में, उनके परिवार में खुशहाली रहे।
0: बिल्कुल,
4: जो मेरा रेडियो परिवार है ना, उनके घर में भी खुशियां आए, खुशहाली आए।
0: बिल्कुल जी, यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और देखिए, हम अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, नन्ही बच्चियों को माता के प्रतीक के रूप में देखते हैं
4: जी,
0: कंजके बिठाते हैं
4: जी। बिल्कुल जी। मैं तो आज पहला नवरात्रा है, तो मेरे घर में तो पहली कंजक मेरी ग्रैंड डॉटर ही है।
0: पोती आपकी?
4: जी जी,
0: पोती की नाती? प्यारी सी पोती का नाम क्या है?
4: जी वो साईशा सबरवाल है।
0: अच्छा
4: जी, वो बहुत प्यारी बच्ची है, और मेरे घर में 70 साल के बाद हमारे घर में कोई बच्ची आई थी।
0: वाह, 70 सालों के बाद?
4: जी जी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननद, हाँ, वो इस टाइम 70 साल अबव है, जो छोटी बच्ची है। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड की जैसे मैरिज हुई, तो मेरे घर में 2 बेटे आए, तो वो भी बड़ा बेटा भी 43+ है।
0: कमाल है, ये है आजकल की बेटियां।
4: ये देखो, ये एकदम से बात को पिक कर लेती है। हाँ, देखो इसको,
0: बहुत प्यारे, बहुत खूब।
4: रेडियो में कह रही है, आपकी आवाज आ रही है।
0: हाँ, बड़ी कुशाग्र बुद्धि है
4: जी, बहुत जी, जी। बहुत। तो ये मंत्र जाप, इसकी नानी ने इसको मंत्र जाप सिखाए हैं, बहुत अच्छे मंत्र बोलती है। और
5: पढ़ाई भी ध्यान नहीं देती है,
4: पढ़ाई।
0: इसका मतलब अगर ये फोन इसको दे दिया जाए, तो आप जो बात कह रही हैं, तो तुरंत इसको मालूम है क्या कहना है।
4: जी जी, आप, मैं इनको फोन दूँ, सिर्फ आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इनसे बात करिए।
0: तो कंट्रोल आप अपने पास रखना।
4: नहीं, मैं इनको इनके साथ ही बैठी हूँ।
0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप?
5: है?
0: आप कैसे हो?
5: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं बेटे। तो
5: आप क्या कर रहे हो?
0: मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो इतनी दूर से आपके घर पर।
5: आप कितने इयर्स के हो?
0: मैं बहुत बड़ा हूँ।

0: जी तो पूरा इंटरव्यू ले लेगी आपका।
1: हाँ वाकई वाकई भाई कमाल है।
0: ये ना अभी दो दिन पहले
1: तो वही देखिए छोटी सी बच्ची है, आपने कहा कि 43, ये कहती 44 तो बच्चियां कहाँ से कम है।
0: नहीं मैं तो नहीं बोलूंगी, मैं तो खुद एक बेटी हूँ, तो हम लोग सेवन सिस्टर थे जैसे, तो हमारी मम्मी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, बट पापा जी हमारे आरती थे, तो उनको भी सिर्फ हिसाब किताब ही पता होता था, तो अब वही वाली बातें हमारे अंदर भी आई है, हम लोग उंगलियों में अपना हिसाब कर लेते हैं।
1: जी जी जी तो वैसे सबरवाल जी आपकी जो खुशी है ना ये बताती है कि वाकई बेटियों से कितनी घर की रौनक होती है, कितनी खुशियां होती हैं।
0: मैं तो कहती हूँ जी भगवान एक एक बच्ची तो सब घरों में दे, एक एक बच्ची तो जरूर होनी चाहिए सब घरों जी में जी। अब जब मेरे घर में नहीं थी बच्ची तो मैं बहुत मिस करती थी कि मेरे घर में भी गर्ल आए, बेबी गर्ल आए, तो मैं उसको वैसे ही प्यार करूँ जैसे गर्ल्स को करवाते हैं। अब वही सारी अपनी जो ख्वाहिश है ना मैं साइसा के ऊपर पूरी कर रही हूँ। अभी दो दिन पहले इंटर स्कूल का कंपटीशन हुआ था, तो ये लोग इनके स्कूल में, ये सेंट जोसेफ हाई स्कूल 44 में पढ़ती है, केजी क्लास के
1: स्टूडेंट। अच्छा केजी क्लास के स्टूडेंट है
0: जी जी, अभी 6 ईयर।
1: तो जैसा जैसा सबरवाल जी आपने बताया था ना कि 70 साल के बाद आपके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, तो आपके घर में उस वक्त कैसा माहौल था, क्या क्या खुशी किस तरह से कुछ बता पाएंगे?
0: मैं जब ये चतन्या में इसकी बेबी हुई थी ना ये, तो जब डॉक्टर ने लाकर इसको, पहले तो मेरी डॉक्टर इन लॉ ने वहीं से इंटरकॉम करके मुझे बताया कि मम्मा हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो ना आप मानोगे ना मेरी ना पूरी बॉडी में ना जैसे शिवरिंग सी होने लग गई।
1: अच्छा।
0: खुशी के मारे ना कांपने लगी और मेरी आंखों से ना आंसू आ गए। उस टाइम पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, पर वो कंट्रोल मैं ज्यादा देर नहीं कर पाई,
1: खुशी के आंसू।
0: मेरी बच्ची आई तो उस टाइम पे तो मेरी आंखों से ऐसे खुशी के आंसू आए मैं बता नहीं सकती।
1: जी बहुत
0: तो आज
1: आज भी आप जब बात कर रही हैं तो वो जो भावना आपकी है मैं महसूस कर सक रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ।
0: जी जी मैं तो कहती हूँ, और बड़ी भगवान लड़कियों से नहीं डरते पेरेंट्स कभी भी, कोई भी पेरेंट्स, हमारे मम्मी ये बात बोलते थे कि हम, मेरे घर में तो जैसे जैसे बेटियां आती गई मेरे घर में खुशियों की लहरें आती गई, और रुपया पैसा तो ऐसे आया कि जैसे उनको खुद को ही नहीं पता होता था कि कहाँ से, जब वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए तो उनके पास कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे धीरे धीरे अब
1: ये सृष्टि की एक ऐसी रचना है, अद्भुत रचना है जिसमें हर तरह की शक्ति का वास है।
0: जी, और जैसे इसकी साइशा की मम्मी हमारे घर में शादी करके आई, प्रीति सबरवाल, जब प्रीति कटोर से प्रीति सबरवाल जब बनी ना, तो वही बात हमारे घर में भी, ठीक है हम पहले भी बहुत अच्छे थे बट उनके आने के बाद तो मैं कहती भगवान ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की परमात्मा माता रानी इन दोनों बच्चियों की किस्मत अच्छी रखे, इनकी इनको सद्बुद्धि दे के रखे, इनकी लंबी उम्र करे, इनको निरोगी काया दे,
1: और दादी को भी तकड़ा रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सबरवाल जी प्रोग्राम में, और भी हमारे श्रोता हैं, क्योंकि जब कोई हमसे बात करता है तो वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि समय का वाकई पता नहीं चलता।
0: 110 टाइम मेरी कॉल की है मैंने
1: जी,
0: अभी में
1: जी। अच्छा
0: चलो मिल गई,
1: शुक्रिया।
0: हाँ थैंक यू जी, थैंक यू।
1: ये इसकी बदौलत मिली है।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नाम बता दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए।
3: हेलो
1: जी,
3: नमस्कार अनिल जी।
1: जी नमस्कार, वेलकम, कैसे हैं जी?
3: मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बेटी मिसेस बेदी बोल रही हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। और आज लगता है कि बेटी अपनी बेटियों से बातचीत में इतनी व्यस्त हो गई है कि आज तो बहुत देर बाद पहुंची आप।
3: नहीं नहीं, आपकी वो कहते हैं कतार में लगे
1: हैं। अरे अरे अरे अरे,
3: बड़ी मुश्किल से आपसे बात हो रही है। और मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं 76 ईयर्स पहले जब पैदा हुई तो मैं दूसरी बेटी, तो आप सोचिए, और मेरे मम्मी कहते थे कि एक तो दूसरी ऊपर से तवेदा पुट्ठा पासा।

0: तो मेरे नाना जी ने इतना ही कह दिया मेरे फादर से कि अगर ये लड़का होता तो फैमिली पूरी हो जाती। आप मानेंगे, वो अपना सामान उठाया, मतलब कहते अपनी बेटी को रखो पास, मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा, आपने क्यों बोला मेरे घर बेटी हुई है। और उसके बाद वो चले गए, उन्होंने 4-5 दिन लगाए मिठाइयां बनवाने में, जाके उनके पैरों में सिर रखा मेरे नाना जी ने, माफी मांगी और मिठाइयां बांटी, कहते मेरे घर 5 लड़कियां और 6 आप बोलने वाले कोई नहीं। उस टाइम की सोच आप सोचिए मेरे फादर की मदर की कितनी बड़ी थी।
1: तो महिला सशक्तिकरण उस समय शुरू हो चुका,
0: उसी समय 76 years पुरानी बात है।
1: जी जी।
0: तब तो वो लोग बड़े कंजर्वेटिव थे।
1: जी जी जी।
0: तो और मेरे घर में 6 साल बाद बेटा हुआ, पर एक बेटी की तमन्ना अंदर कैसे ना सुइयां चुभ रही थी कि मेरे नहीं, और ऊपर वाले ने मुझे मेरी आरजे मीनाक्षी दी आज से 8 साल पहले।
1: जी।
0: वो सगी बेटी से ज्यादा है और मैं उसकी सगी माँ से ज्यादा हूँ।
1: बहुत तो अच्छी बात है।
0: बेटी ऐसा धन है, पर आजकल जो लड़की अनसेफ हो गई है ना, उसके लिए जरूर मैं पेरेंट्स से कहूंगी कि अपने बच्चों को, लड़कों को पहले ही सिखाइए कि अगर आप चाहते हैं आपकी बहन सेफ रहे तो दूसरों की बहन को भी सेफ रखें।
1: जी जी जी जी जी,
0: ये जरूरी बात।
1: और यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि लड़कियों को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है।
0: हाँ जी।
1: क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
0: और देखिए, हम 3 sisters हैं, बड़ी सिस्टर स्टेट अवार्ड विनर, ढेरों उसकी एजुकेशन की लाइन स्क्रीन पे नहीं आती। मेरी छोटी सिस्टर CA अमेरिका में, और मैं ही सबसे कंपनी हूँ, पर मैं सबसे बड़ी पढ़ाई किया रेडियो की।
1: आप कंपनी हुई?
0: MA की
1: हुई। MA की हुई आपने? आपके कहीं से भी नहीं लगती कि कम पढ़ी हुई।
0: नहीं नहीं, वही कम मानती हूँ मैं, पर मेरी फैमिली और मेरी पढ़ाई रेडियो और एक मैगजीन है सरिता, इनसे मेरी पढ़ाई शायद पता नहीं सालों पुरानी, आज तो हो गए होंगे 15-20 साल आपसे जुड़े हुए रेडियो से।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं 10 साल की थी,
1: आज भी
0: 66 साल हो गए।
1: हाँ, आपकी आपकी आवाज में, आपके अंदाज में तो उम्र का तो कोई रोल ही नहीं।
0: उम्र नंबर, मैं अभी भी 16 साल वाला केक काटा है, मेरी बेटी कहती
1: क्या है, बात है,
0: 16 की ही रहेगी हमेशा।
1: हाँ,
0: तो और आपसे बात कर लेती हूँ तो वैसे ही 16 की हो जाए।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपके बेटे ने बात कर ली, वहाँ आपकी बेटी है जो आपका ख्याल रखने वाली।
0: ये परिवार मेरे को बहुत प्यारा है, आकाशवाणी परिवार।
1: तो बेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: हम आज के दिन यही दुआएं करेंगे आप सब के लिए, सब बेटियों के लिए जिनकी आगे भी बेटियां हैं, जिनकी बेटियों की बेटियां भी हैं, और जो नई लाडो घर में प्रवेश की हैं, सबके लिए सब मतलब स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू।

0: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी, मैं छोड़ाऊँ?
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं बेटी को मिले प्यार और सम्मान। हर बच्ची बने देश की शान, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: गुड मॉर्निंग रनी
0: जी। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: सर मैं किरण बात कर रही हूँ।
0: कहाँ से?
1: सर मैं किरण बात कर रही हूँ, कुफरी मुंडा घाट से।
0: कुफरी मुंडा घाट शिमला से?
1: जी सर।
0: जी कुफरी का मौसम कैसे है किरण जी?
1: सर बादल है।
0: बादल हैं, ठंड भी है ना?
1: जी
0: जी, मौसम बदल गया है।
1: जी सर।
0: तो भाई हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की बेटियों ने भी हिमाचल की आन बान और शान को बढ़ाया है खेलों में।
1: जी सर।
0: है ना, तो क्या कहना चाहेंगे आप बेटियों के बारे में?
1: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी खुद की भी दो बेटियां हैं।
0: अच्छा,
1: तो सर मैं अपनी बच्चियों के ऊपर प्राउड हूँ।
0: बच्चियों के ऊपर
1: प्राउड फील कर रही हूँ।
0: प्राउड फील करती हैं, गौरवान्वित महसूस करती हैं आप?
1: जी सर। बेशक मेरी बच्चियां भी छोटी है लेकिन वो मुझसे भी थोड़ी ज्यादा है।
0: हाँ, अभी हमने हमारी एक श्रोता हैं सभरवाल जी, उनसे बात की थी तो उन्होंने कोई बात की तो उनकी बात को उसने सही तरीके से बताया तुरंत।
1: जी जी सर। तो सर मेरी बड़े वाली मतलब फोर्थ में पढ़ती है।
0: अच्छा,
1: मतलब जब भी उसे कोई मतलब

0: कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो फट से जवाब दे देती
1: तुरंत है। जवाब देती है
0: जी, जी सर। वो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो गलत होता है सर वो गलत को एकदम से टोक देती है। हम सर हम अपनी बात हम अपने ही बात कर सकते इतने बड़े बड़ों से।
1: जी जी जी जी जी जी
0: लेकिन
1: तो उन दोनों का नाम क्या है
0: जी सर?
1: उनका नाम क्या है
0: सर? बड़े वाली का नाम श्रेया वर्मा है, छोटी नाम संध्या वर्मा है।
1: चलिए दोनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: थैंक यू सर।
1: और आपको भी सलाम।
0: एक बेटा भी है, उसका नाम शिवांश वर्मा है।
1: बहुत अच्छी बात है, बेटा हो या बेटी दोनों समान रूप से पले बड़े है ना, उनका पोषण हो, बस यही कामना हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किरण जी बात करने के लिए।

तो साथियों ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हमने ये टॉपिक रखा, बेटी को मिले प्यार और सम्मान, हर बच्ची बने देश की शान। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत, अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, बेटियों का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
4: जिंदगी के सपने

0: सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
1: LIC लाया है एक नया प्लान, नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
0: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज अभिनेता अमिताभ बच्चन के जन्मदिवस पर हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की फिल्म मुकद्दर के सिकंदर के गीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, आच्छा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में है, आइए सुनते हैं।
1: Music, eh? You like it? Then why don't you come and join and

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज दिन में 11:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो सिटी ब्यूटीफुल, और इस कार्यक्रम में हम जिन फिल्मों से अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं डॉन, जंजीर, अभिमान, मिस्टर नटवरलाल और नमक हलाल। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन करें, टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतज़ार। और इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आपको सुनवा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गीत। इस फिल्म के लिए गीत लिखे हैं अनजान और प्रकाश मेहरा ने और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का लता मंगेशकर का यह गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हमने आपको सुनवाए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गीत। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बच बोल दिया।
4: ए, क्या मैं बोलूं?
5: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों से आप गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं डॉन, जंजीर, अभिमान।

0: नमक हलाल और मिस्टर नटवरलाल। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 266-0615, 266-0617 और 266-0619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो एक बार फिर से आपको फिल्मों के नाम बता देते हैं जिन फिल्मों से आप इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। और ये फिल्में हैं डॉन, जंजीर, अभिमान, नमक हलाल और मिस्टर नटवरलाल। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, देखते हैं कौन श्रोता ऑनलाइन है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं अंबाला कैंट दूधला मंडी से हुकम चंद बोल रहा हूँ जी।
0: जी हुकम चंद जी, हुकम करिए, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है सर, आप सबका दया है, कृपा है भोलेनाथ की।
0: और जी कैसे लग रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम आपको?
1: बहुत बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। काफी बदलाव भी आ गया है और प्रस्तुति भी अच्छी हो रही है आजकल तो।
0: क्यों, पहले प्रस्तुति अच्छी नहीं होती थी क्या?
1: नहीं, बेहतर हो रही है, मतलब कि और मतलब कि जैसे जैसे डिजिटल युग होता जा रहा है और जानकारियां बढ़ती जा रही हैं तो लगता बेहतर हो रहा है बहुत कुछ।
0: जी जी
1: हाँ। और दूसरी बात यह है कि इंट्राफेस जो कार्यक्रम आता है आपका शनिवार शुक्रवार का,
0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस,
1: हाँ वो भी अच्छा लगता है, उसमें काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी उसमें भेजता रहता हूँ
0: जी,
1: सबके फरमाइश के गाने आते हैं। और आज माता रानी के पहला दिन है तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी सबके मेहर करें।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं जंजीर फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, दीवाने हैं दीवानों को घर चाहिए वाला।
0: जी जंजीर फिल्म का,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर जंजीर फिल्म का ये गीत।
1: हाँ जी निशा।

0: कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील डिस्ट्रिक्ट शिमला एचपी से।
0: जी सूरज जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाओ।
0: बहुत बढ़िया है। तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आजकल आपको?
1: बहुत बढ़िया सर, मैं तो एंजॉय करता हूँ सर सारे प्रोग्राम ना, स्पेशली जो विविध भारती वाले सेगमेंट्स आप लोग रिले करते हैं। जी
0: तो आज जिन फिल्मों से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: उनमें से जो फिल्में बची हैं वो हैं डॉन, अभिमान, मिस्टर नटवरलाल और नमक हलाल। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का नाम है सर नमक हलाल और गाने के बोले, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
0: वाह जी वाह, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है सूरज जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर नमक हलाल फिल्म का ये गीत।
1: ओके सर। अरे अरे अरे ना ना

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो फिल्में हैं डॉन, अभिमान और मिस्टर नटवरलाल। इन फिल्मों से गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 266-0615, 266-0617 और 266-0619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं रमेश, आप भी रमेश, मैं गुलाटी, आप कपूर।
0: वाह जी,
1: आपको प्रेम भरी नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी, रमेश गुलाटी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया रमेश जी, मेरी पसंद आपकी पसंद से ना काफी मिलती जुलती है नाम के साथ।
0: जी जी, अच्छा।

0: हर प्रोग्राम में जो भी चाहे वो कोई प्रोग्राम आप पेश करते हो ना उसके जितने भी गाने होते हैं मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि सारे मेरे दिल के करीब होते हैं।
1: वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि जो मेरी पसंद है वो आपकी भी पसंद है गानों की। तो गुलाटी साहब, आज जो जिन फिल्मों से हम गीत सुनवा रहे हैं, आपने गौर किया होगा कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं।
0: हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि अमिताभ बच्चन जी के जन्म दिवस पर आपने उन्हीं की फिल्मों के आज गाने चुने हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी। तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आजकल आपको?
0: बहुत, मैं तो 50 साल से सुन रहा हूँ कपूर साहब, सारे प्रोग्राम बहुत बढ़िया हैं और भरपूर आनंद लेता हूँ और सारा दिन आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग ही रहता हूँ लगभग।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप तरह तरह से हमारे मनोरंजन को देखते हुए अलग अलग प्रोग्राम पेश करते हो। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू।
1: तो गुलाटी जी, आज कौन सी फिल्म का गीत आपको सुनाएं इस कार्यक्रम में?
0: सर, मिस्टर नटवर लाल का सुना दो, परदेसिया, ये सच है पिया।
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मिस्टर नटवर लाल फिल्म से ये गीत।
0: ग्रेट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: अशोक शर्मा बोल रहा हूँ सर, कैथल हरियाणा से।
0: जी अशोक शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया सर।
0: और बताइए क्या हो रहा है आजकल?
1: बारिश चल रही है सर बहुत तेज। अच्छा, में भी आपके बढ़िया गाने अभी जो पीछे आ रहा, आज रपट जाए तो बड़ा अच्छा लगा गाना।
0: जी
1: टाइमिंग शॉर्ट था सर बिल्कुल।
0: तो आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: सर डॉन फिल्म का सुनवा दीजिए, खाई के पान बनारस वाला।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर डॉन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते भाई साहब, यश कुमार वर्मा
0: जी। यश कुमार वर्मा जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सेक्टर 45 ए चंडीगढ़ से
0: जी। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं। अच्छे
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल अच्छे। आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि पहले से आप बेहतर हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से अच्छे हो जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी दुआएं लगनी ले।
0: अभिमान फिल्म बची है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: मिले कोई मन कर सकता,
0: मीत ना मिला।
1: हाँ
0: जी बिल्कुल, जरूर सुनवाएंगे, लेकिन एक श्रोता से और बात कर लेते हैं
1: जी। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार।
2: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: जी नरेंद्र शर्मा जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी, शुक्रिया।
0: तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
2: सारा दिन सुनते रहते हैं, स्पेशली सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक तो चलते ही हैं।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि गाने की फरमाइश ऑलरेडी यश कुमार वर्मा जी ने कर दी है और हमारे पास एक ही जी। आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत।
2: शुक्रिया।

0: अभिमान फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए. नमस्कार.
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल बोल दिया.
2: क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम. हेलो सिटी ब्यूटीफुल.
0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल. हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं. 12 बजने वाले हैं. आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से.
4: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं. श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे. श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे. लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है. प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अंबा समुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित

0: पांच अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरोड़ा प्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा, वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

गंगा की लहरें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत चित्रगुप्त का, यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से, ये गाना है उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

लगान फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत A.R. रहमान का। यादों की महफिल ये कार्यक्रम जारी है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम को लेकर। लाइफ पार्टनर इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल संगीत है।

0: 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: क्योंकि हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट तो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो

0: यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
0: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगेला।
3: काई पोछे इस फिल्म का गाना श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846
1: कम खर्च बड़ी पहुंच
0: आकाशवाणी चंडीगढ़
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले 1:05 पर हिंदी में और फिर 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं पहले 6:10 पर हिंदी में और फिर 6:20 पर पंजाबी में

नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक प्लास्टिक की घास का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे पेश किया जाएगा शाम 5:20 पर। 5:30 पर सुनिए नॉन स्टॉप नगमे। कार्यक्रम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर। शाम 7:00 विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। आज इस कार्यक्रम में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित राय की शौर्य गाथा पेश की जाएगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुर सांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8:00 झलकी सुनिए हमारा क्या होगा। कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा रात 8:15 पर और कार्यक्रम आपके लिए सुनिए रात 9:00। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का यह कार्यक्रम अभिनेता अमिताभ बच्चन पर केंद्रित रहेगा। और रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11:00 तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। माँ दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। माँ शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और नवीन शुरुआत की प्रतीक हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के विभिन्न जिलों में आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना किए जाने के समाचार मिले हैं। नवरात्रि पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। पानीपत से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आस्था और भक्ति के इस पर्व पर पानीपत में भी शरद नवरात्रि के प्रथम दिन माँ की पूजा अर्चना कर मंदिरों व घरों में कलश स्थापित किए गए। शहर के प्राचीन देवी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लंबी कतार लगाकर मां का बारी बारी दर्शन किया और सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से की गई अपील के मद्देनजर श्रद्धालुओं ने स्थानीय कारीगरों के बनाए मिट्टी के मटके, कलश, दीपक और भारत में बनी पूजा सामग्री खरीदकर नवरात्रि मनाने की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि शक्ति उपासना का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख शांति

शांति समृद्धि और खुशहाली लेकर आए तथा मां भगवती की कृपा से हरियाणा निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि शक्ति साधना आत्मसंयम और सकारात्मक ऊर्जा के संचय का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलावों, नागरिक संसाधन सूचना विभाग को हरियाणा सरकार के कार्य आवंटन नियम 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को जारी रखने को मंजूरी दी। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सातवें राज्य वित्त आयोग से अभी तक राज्य सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हार्ट्रोन को भी नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने को मंजूरी दी ताकि संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सके और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सके। मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को वर्तमान में आवंटित चार विषयों के दोहराव को समाप्त करने को भी मंजूरी दी है। इससे सरकारी कार्यों के आवंटन में अधिक स्पष्टता आएगी तथा विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों में दोहराव और कार्यक्षेत्र में टकराव से बचा जा सकेगा। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया था। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 2651 राशन डिपो आवंटित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ में पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए राशन डिपो में 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नौ रूपां दी पूजा कीती जांदी है। अज नरात्यां दे पहले दिन देवी दुर्गा दे शैलपुत्री रूप की पूजा कीती जा रही है। देवी शैलपुत्री ताकत स्थिरता ते नवी शुरुआत दा प्रतीक ने। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली।
2: देवी दुर्गा दे नौ अवतारां नूं समर्पित नरात्यां दा नौ दिनां दा त्योहार पंजाब समेत देश भर दे मंदरां विच सवेर दी आरती नाल शुरू होया, जिथे वड्डी गिणती विच श्रद्धालु आशीर्वाद लैण लई इकट्ठे होए। सूबे दे वख वख मंदरां जिवें कि अमृतसर दे श्री दुर्गियाणा मंदिर, पटियाला दे माता काली देवी मंदिर अते जलंधर दे श्री देवी तालाब मंदिर समेत सूबे दे होर सारे मंदरां विच श्रद्धालु देवी दुर्गा दे दर्शनां लई पहुंच रहे ने। मंदिरां विच हवन यग अते धार्मिक प्रोग्राम जारी ने। इह त्योहार दशहरे संपूर्ण होएगा। देश भर के श्रद्धालु इन्हां नौ शुभ दिनां नूं बड़े उत्साह अते श्रद्धा नाल मनाउंदे ने। सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके लोगों को शुभकामनावां दित्तियां ने। उधर अमृतसर विच दुर्गियाणा तीर्थ विखे स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री वड्डे हनुमान मंदिर च लंगूर मेले की शुरुआत भी हो गई है। इस मेले दौरान नवजन्मे बच्चों तो लैके नौजवानों तक श्रद्धालु लंगूर का बाणा पहनते हैं तो 10 दिन तक ब्रह्मचारी रेंदे हुए सात्विक जीवन बतीत करते हैं। इस 10 दिन धार्मिक व्रत की समाप्ति दशहरे वाले दिन होंगी है। उधर बटाला भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने मिली। उत्तरी रेलवे ने ऐलान किया है कि अब सारिया रेलगड्डिया आपो अपने निर्धारित समा सारणी मुताबक चलनगिया। जिक्रयोग है कि रेलवे ने कल सवेरे 4 बजे तो दोपहर 2 बजे के दरमियान नवी दिल्ली से हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचण वाली मेल ते एक्सप्रेस रेलगड्डियां नूं रद्द करन दा फैसला कीता सी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विखे केंद्र सरकार दे प्रमुख विज्ञानक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बीते दिनी बायोयुग ऑन व्हील्स नूं रवाना कीता। यह एक मोबाइल आउटरीच पहलकदमी है जिसका मुख उद्देश पूरे भारत में पोली इलैक्ट्रिक एसिड बायोप्लास्टिक बारे जागरूकता पैदा करना ते रवायती प्लास्टिक के पायदार बदल नूं अपनाउण वास्ते उत्साहित करना है। इसका उद्देश विद्यार्थियों संस्थावां कारोबारां ते भाईचारे नूं इस तरह दीआं समग्रियां दे पिछे मौजूद विज्ञान ते रवायती प्लास्टिक दे बदल वजों इन्हां दी संभावी वरतों बारे जाणू करवाउणा है। अज सवेरे जलंधर, फाजिलका, मुकतसर, पटियाला, मोहाली, गुरदासपुर, पठानकोट ते मानसा समेत होरनां कुछ जिल्हां च गरज चमक नाल मीह पिया। मीह पैण नाल मौसम च भावें तब्दीली आई है पर कई थावां ते सड़कां उत्ते पाणी भरन नाल लोकां नूं आउण जाण विच परेशानी का सामना भी करना पिया। मानसा ते फाजिलका समेत कई जिलों दीआं दाणा मंडियां च पई झोने की फसल भी नुकसानी गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने अज फतहगढ़ साहब, एसएस नगर ते नवां शहर के कुछ थावां ते गड़ेमारी, तेज़ हवावां, गरज चमक के नाल मीह पैण की संभावना भी जताई है। भारत ते वैस्टइंडीज़ दरमियान मर्दां दा तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज इंदौर के होलकर स्टेडियम च 7:30 खेडिया जाएगा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNE ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे फिल्म लम्हे के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और हरिहरन ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं शिव हरी।

0: ना पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजहर से अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। गीतकार हैं मनोज यादव और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म प्यार तो होना ही था का गीत, जिसे गाया है रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला ने। बोल हैं समीर के और संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहां तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है कोल्हापुरी कितना नंबर है 9 नंबर और एक और डायलॉग मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा है फिल्म शराबी का ये डायलॉग है और एक और शोले का डायलॉग अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है ये इन्होंने लिख करके भेजा है एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भावनाओं को दर्शाता है जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है इसलिए मुझे बड़ा पसंद है एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता बस महसूस किया जा सकता है अकेलेपन का दर्द एक तरफा प्यार की कशिश दोस्त और माँ बहन के लिए असीम प्यार इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज़ अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत अभिनेत्री कौन है आप बताइए

0: सिकंदर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है ये, आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म। जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता, हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो शोले फिल्म में का की बात इन्होंने लिखी। और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद, वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम, जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए आपका धन्यवाद। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि भारतीय सिनेमा के महानायक जिनके लिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनका रुतबा है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी कड़क आवाज जब गूंजती है तो आज भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है का रोमांच सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: कहता है कि आप जी हजारों साल, ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज का गाया हुआ फिल्म एक नजर का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ा उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आर डी बर्मन का।

0: एक साथी हमारे लिख रहे।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। ये साथियों ने हमारे बात लिखी और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी है, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीजें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय है। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्तित्व, ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना डॉन फिल्म

नमस्कार, मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटी माता पिता के जीवन में रंग भरती है और घर को अलहड़ शरारतों से गुलजार करती है। उसके होने से मन को सुकून मिलता है। गहरी तकलीफ में वो हौसला बनाती है और उसकी खिलखिलाहटें दर्द में भी हंसने का बहाना देती है। घर को सचमुच घर बनाती है बिटिया। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो क्या उसे देखकर हम ये कहते हैं, उसकी बातों में शहद सी मिठास, उसकी सांसों में इतर की महकास, होंठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके दहके अनार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या बेटी के जन्म लेने पर हम उतने ही खुश होते हैं जितना बेटे के जन्म लेने पर? बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियों के आने पर बाह पसार कर उनका स्वागत कीजिए।

हमारे देश में बालिका को कितने ही रूपों में पूजा जाता है। नन्ही बच्चियों को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और विवाहित बेटी को पार्वती का। हर प्रतीक, हर रूप के पीछे न जाने कितनी कथाएं और कितनी आस्थाएं हैं, पर वास्तविक जीवन में कई बार हम इस शक्ति को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बालिका शक्ति स्वरूपा भी है और भविष्य में सृजन का आधार भी। बच्चों की परवरिश बच्चों की तरह होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। माता पिता के शब्द और व्यवहार बच्चियों की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लड़की और लड़के के जन्म के बाद परिवार में दोहरी मानसिकता देखी जाती है, चाहे बात खान पान की हो, शिक्षा की हो या खेलने की। लड़कों के साथ अलग व्यवहार और लड़कियों के साथ अलग। हालांकि इस मानसिकता में कुछ हद तक बदलाव आया है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी।

जहां बच्चियों को देवी तुल्य मानकर पूजने की परंपरा है, वहां यौन हिंसा जैसी बातें मन को विचलित कर देती है। बच्चियों के प्रति गंदी सोच रखना, लिंग भेद करना और उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना, ये बातें हमें झकझोर देती है या छलावा लगती है। बेटियां पराया धन नहीं है, उन्हें पढ़ाएं फिर देखें, वो अपनी राह खुद बना लेंगी। जब बेटियों की थालियां और बस्ते बेटों के समान सजते हैं तो अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। खेल के मैदान गवाह है कि जाने कितनी बार देश का मान बेटियों ने बढ़ाया है। राजनीति, कॉरपोरेट, शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी पताका फहराई है, तो फिर हम बेटी के आगमन पर खुश क्यों नहीं होते। आइए आज के दिन हम ये प्रण लें कि रूढ़ियों को तोड़कर लड़के और लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ाएं, लिखाएं और करियर के अवसर दें, मुसीबत में उनका साथ दें, उनके कौशल को निखारें, उन्हें प्रशिक्षित करें और आत्मनिर्भर बनाएं।

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5

0: स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर

0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
2: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
3: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
2: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
4: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक है उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
2: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार

0: मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
2: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्माम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
3: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
1: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
4: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3,000 झांकियों ने एक साथ

0: पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। पुस्तक की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वजापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए

0: मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम है दूर की आवाज़

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे मंजू द्विवेदी के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मन चाहेगीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनीता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लाहिरी की आवाजों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लाहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज

भाने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी चंचल और खुशी आनंद का, आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद फरीदा बानो नजीब खान बाबू भाई और अशरफ खान ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार पीयूष तरुण दीपेश दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है सहारनपुर से सुरेश नारंग आशु पथिक सोनाली और कृष्ण नारंग कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे रमाताई सीमाताई रीमाताई दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार, और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृष्ण नारंग, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस नेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: नाट्य तरंग श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
4: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
5: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मूल्य देखना चाहिए।
6: ओए देख के चलो, ए तुरी जाना है चलो, तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
7: ओए केड़े पिंडो आया है?
6: पता नहीं तेनू, शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
4: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिस्टर शर्मा बाहर ही खड़ी थी।
8: क्यों जी, कुछ बात बनी?
5: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
8: क्या कहते हैं?
5: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
8: इसका मतलब?
5: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
8: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बलाकटी।
6: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बलाकटी? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
8: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
5: कोशिश करेंगे।
8: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
5: हो सकता है।
8: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
6: अरे तुम तो जानती हो, शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
8: हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
6: ओहो, लेकिन वो
8: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
5: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
9: अरे आइए आइए शर्मा जी।
6: नमस्ते
9: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब, धन्य भाग्य हमारे आप हमारे घर पधारे।
6: अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप?
9: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं
6: आप तो जानते ही हैं, दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है। काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
9: हाँ, आप बैठिए।
6: हाँ बस मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
9: और सुनाइए।
6: वो बस ऐसा था कि
9: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
6: नहीं,
9: पानी है सोडा?
6: नहीं नहीं, मैं नहीं लेता ये, मैं नहीं लेता।
9: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
6: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
9: आई डोंट ड्रिंक।
6: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक

0: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक। आप इसे अपना ही घर समझ।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझकर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
1: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
0: हाँ, क्या हुआ?
1: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
0: चक्कर? घनघोर चक्कर। बट आई डोंट ड्रिंक।
1: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
0: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की।
1: फिर आपने क्या किया?
0: बहुत कोशिश की उन्होंने।
1: फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया?
0: मैं ऊपर गया और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
1: फिर
0: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
1: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
0: नहीं।
1: फिर
0: मैं और ऊपर गया।
1: अच्छा, फिर
0: वहां भी न रुके?
1: तो
0: मैं और ऊपर गया
1: और वहां, हाँ, फिर वहां क्या हुआ?
0: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
1: वो लोग?
0: वो लोग नहीं माने।
1: फिर आपने क्या किया?
0: करना क्या? कह दिया उनसे।
1: क्या
0: कह दिया उनसे? नहीं मान दे तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
1: छुट्टी ले ली? कितनी?
0: पहले एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
1: लेकिन इतनी लंबी लीव?
0: मेडिकल।
1: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
0: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
1: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
0: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद सच्चा।
1: क्या मतलब?
0: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं।
1: हाँ?
0: ऐसे ही कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर।
1: हाँ हाँ, जिगर जिगर।
0: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
1: हाँ, और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
0: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना साल भर से के नहीं रुकी है
2: बराबर। हाँ जी, मिला है? क्या मशवरा दिया उन्होंने?
1: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
3: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
1: तो क्या करूं फिर?
3: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
3: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
3: ओ, जो कोई भी हो, उसके घर जाकर उससे फौरन मिलिए।
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
3: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंसकर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर न चाहते हैं।
2: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहाँ से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिलिया ही जाकर सुबह उससे।
1: अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिलाऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
1: और उषा?
2: उषा, उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
1: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ?
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
4: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
5: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी जरूरत डूबती नजर आती है।
4: मौत से पहले मन में कहरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
5: तुम मत लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो,

0: मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
1: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
0: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
1: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
0: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
1: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
0: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपदा में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
1: हाँ हाँ, उसकी दो वजहें हैं, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसका सेवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
0: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
1: कैसी भूल उषी?
0: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
1: हाँ हाँ, तो अभी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
0: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
1: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए बचा के रखो। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
0: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
1: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
0: तो
1: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
0: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
1: क्या?
0: हम शादी कर लें।
1: ये कैसे हो सकता है?
0: बारात लाकर, बाजे बजाकर।
1: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हों, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
0: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाएं, या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है।
2: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
3: क्या बात है?
2: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
3: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
2: राम जाने क्या उल जलूल बक रही है।
3: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
4: इस छछमंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
3: घनश्याम जी?
4: ओफो पिताजी, समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
3: जी
4: जी।
5: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो लेकर।
1: नहीं, नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हा?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: कुछ नहीं, वो
3: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
3: तो भैया जाओ जाओ, अपने काम पर जाओ।

0: पहले करे तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं
2: भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: कहिए
0: कहिए क्या बात है
2: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
0: ठीक है बोलिए।
2: उनसे मिलना है।
0: अपॉइंटमेंट लिया है?
2: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
0: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
2: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
0: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद दो एमपी उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए।
2: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
2: एचपी शर्मा।
0: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
2: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
2: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
2: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
4: आइए रतनलाल जी, कहिए।
2: जी मैं एचपी शर्मा।
4: हाँ काम बताइए।
2: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे
4: साथ। वही तो पूछ रहा हूँ
2: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
4: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
2: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
4: तो फिर अनर्थ कैसा?
2: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
4: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
2: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
4: देखो रतनलाल
2: जी, एचपी शर्मा हूँ, एचपी शर्मा। देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
4: ठीक है आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
2: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लेकर नहीं लाया हूँ
4: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए?
2: मैंने सोचा आपसे जबानी।
4: अरे साहब इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
2: मैं अभी लिख लाता हूँ।
4: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
2: नहीं नहीं पानी पानी का कष्ट न करें मैं।
4: ओहो हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
5: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई। लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
6: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे।
2: हाँ, आना तो था बस।
6: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
2: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
6: नो नो नो, मैं ये अफसरों उफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
2: जी
6: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कांटेक्ट की बात है।
2: जी
6: कांटेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
2: 5,000?
6: हाँ बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
2: वो तो
6: क्या किया जाए,
2: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना।
6: अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़े ही है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
2: ना ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
6: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
2: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
6: अम्बक ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा,

0: कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1500 में हो सकता होता तो ना मांगता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप ही सोचिए।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
0: ओह आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
1: नहीं नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
0: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टैक्ट मांग रहे हो, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
1: यज्ञ तो ठीक है, पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
2: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
1: 201 ब्राह्मणों का?
2: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना। देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए,
1: मगर इतना पैसा।
2: नहीं तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
3: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
4: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
1: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
2: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ी, ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
4: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
2: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
4: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं।
5: ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
6: मैं समझता हूँ महाराज।
4: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद कि तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
1: सच बाबा?
4: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
1: 1.5 तोला सोना?
4: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
5: राजवंती 1.5 तोला सोने का दान?
2: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
4: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
1: सच कह रहे हैं आप?
4: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
1: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
7: माजी माजी माजी,
2: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
7: माजी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201 ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
2: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
8: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
9: पिताजी कि आपसे मिलने आए थे।
1: ओह आप क्या
8: 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव।
2: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
9: आइए चंद्रकांत जी।
2: देखा आपने आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए।
9: चंद्रकांत, चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं नहीं, ये चंद्रकांत
2: क्या ब्राह्मण नहीं?
9: सीके यादव है
2: तो क्या ब्राह्मण?
9: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
2: क्या कह रहे हैं आप?
9: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है।
8: नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
8: यही है वो चंद्रकांत यादव यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
2: राम कैसा अंधेरे, अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।
7: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
2: आइए आइए, यज्ञ भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
9: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ?

0: आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
1: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
0: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
2: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
0: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
2: तो सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो?
0: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
1: तुम सचमुच आ गए हो?
0: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
3: कहाँ के रहने वाले हो?
0: इंदौर का।
3: और तुम्हारे पिताजी?
0: इंदौर के।
3: और तुम्हारे दादा?
0: दादा, पड़दादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
3: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
0: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊँगा।
3: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
1: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार ना उजाड़ देते।
0: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
1: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
3: जाने का समय आ गया है बेटा।
2: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी ना वफा ने काम किया।
1: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
2: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
4: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
3: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
0: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूले से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
3: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूं और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
0: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
5: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
3: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
6: 22 जून, साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता

0: नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब ज...

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: भी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
2: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। उत्तम जी नमस्कार। एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी। नमस्कार जी। आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
3: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
3: ये भी तो एक हिस्ट्री है।
0: ये भी एक हिस्ट्री है क्योंकि यहां से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
3: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
0: जी हाँ।
3: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं साईं बाबा।

0: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
1: जी जी,
0: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
1: अरे क्या बात है,
0: क्योंकि जगदीश आया था मेरे पास, दो गाने अरेंज करने आए, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं, दो गाने मुझे अरेंज में, जैसे दूसरे में जो अटराते थे ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज करे, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी, बहुत बड़ी क्रांति उनकी बहुत चली। क्रांति के बाद ही वांटेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म
1: जी,
0: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिक डायरेक्टर लेंगे। तो म्यूजिक डायरेक्टर कौन? जगदीश।
1: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
0: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
1: ओ
0: म्यूजिक टीचर थे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, जैसे और गाने बना लिए
1: जी,
0: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
1: मनोज जी ने कहा।
0: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे, तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो, मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह।
1: अच्छा,
0: म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई, मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम। क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का। अच्छा ले लो। तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा, तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हर चौथे दिन जगदीश आ जाए, मनोज साहब बुला रहे हैं, मैंने कहा यार देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है। महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो डैडी के पास बैठा मैं, मैंने कहा डैडी ऐसे ऐसी ऑफर आई है। क्या ऑफर है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
1: मनोज जी का बैनर, VIP
0: राज कपूर, VIP मतलब
1: जी
0: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
1: जी,
0: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं, जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक डायरेक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम है। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही, तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैं कहा नहीं नहीं आप बताइए। मतलब देखो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है, जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं वहां से तुम शुरू कर रहे हो
1: जी जी,
0: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
1: वाह।
0: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी भूली नहीं? बोले कभी मौका ही नहीं आया। आप तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: ये पिताजी की बात है,
0: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ, हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद
1: जी जी,
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ विंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है हाँ, वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है राधा जी का और महेंद्र कपूर का। उसमें ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था। हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ, लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख ले नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है दुनिया में।

0: इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: कब तलक शम्मा जली, ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
2: तो हमने पेंटर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
2: वो रिकॉर्ड किया कि वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
2: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
2: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
2: और इसको
0: गाने की शक्ल
2: में गीत में गाना देना। कब तलक शम्मा जली,

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने उस वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है, हाँ,
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है, फिर आता है और फिर इसके अंतरे और फिर इसमें और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी,
0: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करें ना, तुम
1: कुछ हटेगा,
0: लाजवाब शेर है
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते।
1: और अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल थी।
1: कपूर
0: फिर देखिए, फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है। विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना।
1: क्या बात है,
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
1: जी जी जी,
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो।
1: हाँ,
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी,

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना। बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है, कब तक क्षमा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत

0: यहाँ से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है, कब तक शम्मा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मजेक्टर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मजेक्टर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मजेक्टर है ऐसा गाना, नए मजेक्टर मजेक्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मैं तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है तो 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली
0: छाती, जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है, क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: देखिए इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाए।
1: जरूर बिल्कुल सुनते।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस। ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी।
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चंद प्रदेशी पंजाबी।
0: हाँ।
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज
0: जी,
1: चंद प्रदेशी, ये उस कैटेगरी के। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा।
1: तो उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की,
1: पूरी पंजाबी। हाँ।
0: स्मिता पाटिल और राज बब्बर
1: की फिल्म थी वो, और उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था।
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस।
0: ये बताइए,
1: कैमरामैन

0: थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना दीदी का, लता जी का गाना
1: जी,
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है
1: जी जी जी जी,
0: क्या लोग थे,
1: क्या बात है।
0: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
1: जी लता
0: कल
1: दीदी।
0: हाँ कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था, सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था बस,
1: सिर्फ इतना मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सन।
0: फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
1: जी,
0: ताकि आदमी लेके आए, फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल से थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
1: अच्छा अच्छा,
0: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
1: अब मेल वॉइस रह गई है,
0: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाया, उसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, नहीं यार ये सब आवाजें जो है सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
1: फीमेल पार्ट है आपके पास,
0: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया क्या लग रहा है गाना, जब वो साइलेंट हो जाए मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है कड़क और दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाएगा,
1: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
0: कैमरामैन थे
1: और गायकी शौकिया थी,
0: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक का भी गाना

0: तो मैंने कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही और नई आवाज लग रही
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है,
0: वो आज भी हिस्ट्री है गाना।
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है गाना
1: जी।
0: सुना जाए इसको
1: जरूर। आप थोड़ा गाइए।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तू याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी,
1: डिले भी हो गई थी, और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और वारिस हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी।
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी।
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी। अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है और
1: दिल तो पागल से शुरू होती
0: जी,
1: है
0: जी, दिल तो पागल है से। तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी जी।
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
0: जी,
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी।
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजिली बन जाएंगे।
0: जी,
1: लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो।
0: जी, दोनों काम अब आपको खुद ही।
1: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में।
0: जी।
1: हाँ, मजा आया काम करने में। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही।
0: हाँ।
1: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है।
0: जी,
1: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
0: गजब।
1: तो मनोज जी ने मुझे बोला, उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया और घर आते ही वो शुरू हो गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना बुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
0: क्लर्क क्यों, तुमसे जो बात हुई,
1: तुमसे जो बात,
0: ये जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना।
1: जी।

0: वो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए। यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
1: जी जी,
0: कभी नहीं मांगा। जितना भी आप मेरा आज काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
1: जी जी,
0: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
1: जी जी,
0: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो,
1: जी
0: वसंत देसाई हो, या चित्रगुप्त जी हो, या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
1: जी,
0: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
1: जी,
0: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा, एज ए अरेंजर काम बढ़ता चले गया।
1: जी,
0: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने, और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है।
1: जी,
0: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं, और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर लिया तो मतलब टॉप एंड है ना।
1: जी जी,
0: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
1: काम आएगा।
0: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली।
1: जी जी,
0: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं।
1: जी जी,
0: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी।
1: जी,
0: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा।
1: जी,
0: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चले नहीं थी,
1: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ।
0: और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे।
1: जी,
0: पेंटर बाबू का जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में कि बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आर डी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, कहा तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तूने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
1: कायम रहेगी,
0: मेरे साथ कायम रहेगी, वो संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
1: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है।
0: जी, इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको।
1: जी,
0: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है।
1: जी,
0: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है।
1: जी जी,
0: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
1: बिल्कुल,
0: एक चाय वाला करोड़ोपति बन गया, एक भेल वाला अरबोपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है।
1: जी,
0: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का।
1: जी,
0: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया, तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
1: जी,
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तू कहाँ तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो वायलिन दे दी,
0: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है।
1: जी,
0: अभी गाड़ी को कहाँ तक ले जाता है? तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे बैठ पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है,
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड है, और लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है।
1: जी,
0: और मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए।
1: जी,
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर,
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।

0: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी उन्हें वो
0: कहानी सुनना
1: चाहिए। बात की बात है, क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था
0: जी।
1: तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके
0: जी,
1: कवन मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टार कास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी वो। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं राइटर कवर जलालाबादी राइटर थे वो बैठे
0: जी,
1: थे हम लोग। तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
0: अरे अरे अरे,
1: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वेटिंग वहीं छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
0: अरे बाप रे,
1: और वहीं खत्म हो गए,
0: हार्ट अटैक आया।
1: हार्ट अटैक आया। और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे, तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई
0: जी,
1: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा जी ठीक है करते। तो मैं घर गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
0: यस यस बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
0: जी,
1: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
0: जी,
1: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है। तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
0: जी।
1: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा। तो जगदीश का, मगर जगदीश के पहले 2 गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किया हमने
0: जी, उसमें से 2 जगदीश जी के थे,
1: डेढ़ जगदीश का,
0: डेढ़ थे जी हाँ।
1: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
0: जी,
1: टिप्स वालों को क्या बन रहा पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया उत्तम, ये लिख लिया हो गया, नारायण अग्रवाल का एक गाना है
0: जी, जी।
1: तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ये मेरा है। और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत
0: जी जी,
1: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का 4th भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। We'll be right back.

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई की आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन को एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी।
1: दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर तमिलनाडु। टुडेज प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट्स वर्थ 13,000 करोड़ रुपीज। वी आर इनॉग्रेटिंग मेनी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स एंड लेइंग फाउंडेशंस फॉर न्यू वंस। सम विल मेक daily travel easier, others will strengthen industry and trade. Together they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारों में बदलाव के बावजूद तमिलनाडु के विकास और वहां के लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने तमिलनाडु के मंदिरों, वैज्ञानिक संस्थानों और मेट्रो रेल नेटवर्क का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को नवरात्र की बधाई दी। इससे पहले दिन में श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी हिस्से का उद्घाटन किया। इसे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने संयुक्त रूप से नई मेट्रो सेवाओं को झंडी दिखाकर ट्रेन में यात्रा की। ये हाल ही में आरंभ दूसरे चरण के कॉरिडोर 4 कांग है। इसमें लगभग 15 किलोमीटर में फैले 11 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु के जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय का 5 दशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की ताकत बनना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया समाधान की ओर देख रही है और युवाओं में ये समाधान देने की क्षमता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में ना लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार, इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल की सेवाएं समाप्त कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए। सऊदी अरब ने कहा कि किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर एमटी जेम नंबर 2 पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा के तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस त्रिशूल भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 26 में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के प्लायमाउथ पहुंच गया है। यह अभ्यास रॉयल नौसेना के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास के तट पर 2 चरणों में बृहस्पतिवार तक चलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7

0: बजे से इंदौर में खेला जाएगा। पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं। वहीं उदयवीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उदयवीर ने फाइनल में कुल 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत। संगीत ए आर रहमान का है।

लीजिए अब सुनते हैं अफसाना प्यार का फिल्म का टाइटल सॉन्ग आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत है भप्पी लहरी का।

ये गीत अभी आपने सुना साजन फिल्म से। इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाई दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं और ये खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में ये सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खान पान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवा

0: मिठाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर तब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिला खुद से ही दवा ले लेती है, या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट ये बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़ी शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले। कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे, पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. Dosto, aapke sujhav, salah aur feedback ke liye aap hame call ya message kar sakte hain. Hamara number hai 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है

आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे। कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा। मेरी प्यार भरी नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे अब यहीं पर संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों से आपने गीत सुने वो फिल्में थीं मैंने प्यार किया, आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, दिल फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों को आपने एक बार फिर से सुना आशिकी फिल्म के गीत में। और उसके बाद हम लेकर आए खुदा गवाह फिल्म का गीत, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ें थीं। और कार्यक्रम के अंत में हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में हीना फिल्म का गीत। और अब हमें इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Biles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Biles से मुक्ति पाएं।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਫਿਲਮ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਵਾਜ਼ KS ਚਿਤਰਾ ਦੀ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भाजपा महिला मोर्चा जेएनयू की 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कांग्रेस की चुप्पी के विरोध में कल नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्विन नवरात्रों के प्रथम दिन माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सांसद नवीन जिंदल ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन का एक रुपया एक ईंट का सिद्धांत सामाजिक समानता, सहयोग और बंधुत्व की मिसाल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर परिसर में हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट का उद्घाटन किया। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने झज्जर में सिंचाई विभाग के 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और एक परियोजना का शिलान्यास किया। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मामले में कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा कल नई दिल्ली में नारी शक्ति हुंकार आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के सांसद पर लगे गंभीर आरोपों पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकवाई जाम के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर गंभीर कार्रवाई होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी उनकी कथनी और कथनी करने के अंतर को उजागर करती है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि 9 अक्टूबर को जेएनयू की आंतरिक समिति ने छात्राओं के यौन उत्पीड़न और अंकों के बदले यौन संबंध बनाने की पेशकश से जुड़े आरोपों को सही पाते हुए संबंधित सांसद के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की। उन्होंने सवाल किया कि इतने गंभीर मामले के सामने आने के बावजूद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या कांग्रेस के लिए महिला सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण अपने नेताओं को राजनीतिक संरक्षण देना है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष राका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें ₹50,000 की जमानत पर रिहा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी के साथ आश्विन नवरात्र के प्रथम दिन माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक कर विधिवत पूजा अर्चना की और महामाई का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इसके उपरांत मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में आयोजित हवन यज्ञ में भाग लिया और आहुतियां डाली। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्विन नवरात्रि की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

0: मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर पंचकुला जिला रेडक्रॉस सोसाइटी, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड तथा श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं से बातचीत की और उन्हें बैज लगाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कुरुक्षेत्र की श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत द्वारा आज कुरुक्षेत्र में अग्रसेन जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह को सांसद नवीन जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। सांसद नवीन जिंदल ने सभी को नवरात्रि पर्व एवं महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
1: शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देवी के नवरात्रों की देवी की कृपा सभी के परिवारों के ऊपर बनी रहे और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी हम
0: उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने समाज को आदर्श समाज

0: चक्रवात का सिद्धांत दिया। उनका एक रुपया और एक ईंट का सिद्धांत सामाजिक समानता, सहयोग और बंधुत्व की अनूठी मिसाल है जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने सभी से महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज और देश को समृद्ध बनाने का आह्वान किया। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर आज अंबाला शहर के महाराजा अग्रसेन चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने महाराजा अग्रसेन को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने भगवान अग्रसेन के जीवन, उनके आदर्शों और समाज को दिए योगदान को याद किया।
1: वर्ण पूरे समाज के लिए गौरवमयी पल है। भगवान अग्रसेन जी ने अपने जो साम्राज्य था के अंदर एक रुपया एक ईंट प्रथा को चलाया और आज भी समाजवाद का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये उदाहरण है। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको एक निगाह से देखने का काम भगवान अग्रसेन जी ने अपने समय में किया। मैं आज उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज यहाँ आज भगवान महाराजा अग्रसेन जी के चौक पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनके आदर्शों से, उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने के लिए आज सब लोग आए और अपने जीवन में उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प भी यहाँ सारे समाज ने लिया।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज माता मनसा देवी मंदिर परिसर में हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल और पंचकुला के पुलिस आयुक्त पंकज नैन भी उपस्थित रहे। इस टूरिस्ट पुलिस पोस्ट पर 20 प्रशिक्षित जवानों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। इन जवानों को सामान्य पुलिस वर्दी से अलग विशिष्ट टूरिस्ट पुलिस वर्दी प्रदान की गई है ताकि श्रद्धालु उन्हें आसानी से पहचान सकें। ये जवान 24 घंटे श्रद्धालुओं की सहायता और सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहां लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी अब इसी टूरिस्ट पुलिस पोस्ट से की जाएगी। इसके लिए पोस्ट में ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट शुरू होने से माता मनसा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित, सुगम और सुखद होगी। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने आज झज्जर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंचाई विभाग की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और एक परियोजना का शिलान्यास किया। इन पर 37,50,00,000 रुपए की योजनाएं शामिल हैं और सभी 11 विकास योजनाओं से जिले के विभिन्न गांवों में जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा खेतों में जल भराव और बाढ़ के पानी की निकासी में मदद मिलेगी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण भी किया गया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने आज कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कृपा राइस मिल में व्यापारियों और मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि आगामी सीजन में मंडियों में खरीद व्यवस्था को सुचारू और निर्बाध बनाने की दिशा में अभी से काम करना शुरू होगा। इसके लिए मंडी से जुड़े किसान, आढ़ती, राइस मिलर और सरकार की खरीद एजेंसी सभी का पक्ष सुनकर व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाना होगा जिससे सभी वर्गों को और अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए उन्होंने अपने टीम को एक प्रारूप तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री जिंदल ने धान सीधे राइस मिल में लाने का सुझाव देते हुए कहा,
2: और फिर मंडी से जीरी आती है राइस सेलर्स के अंदर जहाँ पर वो उसको प्रोसेस करके मिलिंग करके और चावल बना। तो मेरे दिमाग में ये आया कि पहले जो है किसान खेत से मंडी लेकर के आए और मंडी से फिर सेलर में जाए। अगर सीधा ही किसान अगर सेलर में ले जाए तो, और सबके नहीं, जो मंडी में लेके आना चाहे वो मंडी में लेके आ सके, जो सेलर लेके जाना चाहे वो सेलर लेके जा सके।
0: मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट और कल से 15 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा महिला मोर्चा जेएनयू की 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कांग्रेस की चुप्पी के विरोध में कल नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्विन नवरात्रों के प्रथम दिन माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: टिंकू जी 100 ग्राम पेड़े दियो।
2: 250 ग्राम तो कट नहीं मिलेगा।
1: ओए क्यों,
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: ओ भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगता।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट। इस विच नो मिनिमम बैलेंस, पर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज तो।
4: दे भाई, RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: नमस्कार, ये आकाश।

0: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं
2: अरे बुद्धू हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें जागो ग्राहक जागो
4: घर का सपना हो

0: खरीदारी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
2: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ, ते तू वायरल ना होण दा?
1: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांड्यां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈ ਮਾਰਾ ਲਈ ਕਰੋ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान की खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी 1913 को गुंद्रावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और आईएमए के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारी

न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस

जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लाओ जी अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
2: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ ते तू वायरल ना होण दा।
1: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत

हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

जी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी हमारा क्या होगा। लेखक हैं प्रकाश साथी और निर्देशक कमल दत्त।

रुमाल कहाँ है? अरे ये रहे। अच्छा ये हो गया। कमीज है,

0: तो आ गई। अरे अरे वो कहाँ है, कहीं नहीं दिखाई देता। कमला कमला
1: क्या है?
0: ओहो तुम्हें मालूम है ना मैं टूर पे जा रहा हूँ, मेरा सामान तो पैक करवा दो।
1: सब कुछ तो तैयार कर रखा है, सिर्फ तुमने अटैची में डालना है और इतना शोर।
0: अरे शोर ना करूं तो क्या करूं, अब वो मेरी ऐने का कवर कहाँ है?
1: वो तुम्हारी कोट की जेब में क्या नजर आ रहा है? सामने चीज पड़ी होती है और तुम्हें दिखाई नहीं देती। मैं जा रही हूँ, खाना बनाना है, कुछ और रह गया हो तो अभी बता दो। सामान भी पैक नहीं कर सकते, दफ्तर में पता नहीं कैसे काम चलाते हो।
0: ये तो हो गया, लेकिन वो कमला कमला।
1: ओफो अब क्या है?
0: वो तौलिया कहाँ है, नहीं मिल रहा ना?
1: तुम अपनी ऐनक का नंबर बदलवा लो। वो सामने क्या रखा है? तौलिया। देखो ये है तौलिया, ये कपड़े और वो शेप का सामान। और कुछ जल्दी बताओ भाई, तवे पर रोटी जल रही है।
0: अरे तुम्हारी रोटी जल रही है, यहाँ हमारा दिल जल रहा है। गाड़ी होने का वक्त आया है और अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया।
1: दो घंटे से कह रही हूँ, 10 मिनट में बन जाएगा।
0: लेकिन वो 10 मिनट कभी पूरे भी होंगे कि नहीं?
1: ओफो तुमने टूर पर क्या जाना होता है, सारे घर को सिर पर उठा लेते हो। कभी ये लाओ कभी वो लाओ।
0: क्या करूं, टूर पे ना जाऊं या अटैची ना ले जाऊं?
1: मैं तो कहती हूँ जी तुम टूर पर ही रहा करो, घर आने की जरूरत ही क्या है।
0: बस चला दिया ना हुसन वालों का तीर। अरे बाहर जाकर भी मुझे जब तुम्हारी याद आती है ना कमला तो भागा चला आता हूँ।
1: मैं तो सब समझती हूँ। देखो जी तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो।
0: कौन सी बात?
1: हाँ भूल गए, तुमने कहा था ना मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे गले का इलाज करके आऊंगा।
0: क्या कहा, गले का इलाज?
1: हाँ मेरे गले के लिए सोने का हार लाने की बात कही थी ना तुमने।
0: भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं। हाँ? सोने की हार की बात कब हुई थी भला?
1: हर मर्द को यही बीमारी होती है कि वो औरतों के गहने वाली बात हमेशा ही भूल जाते हैं।
0: तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है कमला।
1: क्यों, कुछ भूल गई क्या, क्या खराबी है?
0: यही खराबी है कि छोटी सी छोटी बात भी तुम्हें याद रहती है।
1: क्यों ना हो, आखिर बीवी किसकी हो?
0: सुनो
1: हाँ?
0: पीछे अपनी दुकान यानी के ब्यूटी पार्लर का ध्यान रखना, और ऊपर जो हमारे नए किराएदार आए हैं ना उनके साथ ज्यादा बातचीत ना करना, नहीं तो कई चीजें हर रोज मांग कर ली।
1: तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी।
0: अरे हाँ वो सामने वाली दुकान वालों ने फिर अपना नया बोर्ड लगवा दिया है, हमें भी अपना बोर्ड बदलना होगा।
1: ओहो कब तक हम लोग ये बोर्ड नए नए लगवाते रहेंगे? पहले उनका बोर्ड था हम चेहरे के धब्बे मुहासे छुरियां ठीक कर देते हैं, हमने बोर्ड बनवाया चंद मिनटों में खूबसूरत बनी है।
0: हमारे बोर्ड को देखकर उन्होंने बोर्ड बनवाया, हम गली वालों को खूबसूरत बनाते हैं, हमने बोर्ड लगवाया हम सारे शहर को खूबसूरत बनाते हैं।
1: उनका अगला बोर्ड था हम शहर को खूबसूरत बनाते हैं, और हमने लिखवाया हम सारे देश को खूबसूरत बनाएंगे। इस तरह से वो भी बोर्ड बदलते चले गए और हम भी बोर्ड बदलते चले गए।
0: अब उन्होंने लिखवाया है कि सफेद बालों को हमेशा के लिए काला करवाइए, हम बोर्ड बनवाएंगे हम सफेद बालों को पैदा ही नहीं होने देंगे। कौन है?
2: भगवान।
1: देखो तो सही, भगवान खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आ गए हैं।
0: अरे अरे तू कुछ नहीं समझती। अरे हाँ हमारे नए किराएदार का नाम भी तो भगवान है, वही होगा। आ जाइए, दरवाजा खुला है जनाब।
2: देखिए जनाब मैंने गलती से आपका मकान किराए पर लिया है, पर ये कैसा मकान है, कल सारी रात छत टपकती रही, पानी लगातार आ रहा है।
0: हमने तो आपको पहले ही बता दिया था जनाब, हमारे घर के हर कमरे में पानी होगा।
2: वो ऊपर देखो, वो देखिए खिड़कियों के सारे शीशे टूटे हुए हैं, वहां से तेज हवा आती है।
0: अजी जनाब हमारे कमरे एयर कंडीशन है, अब देख लीजिए ताजा हवा हर वक्त आती है कि नहीं।
2: ओहो कमरा कुछ ज्यादा ही एयर कंडीशन है, ये हवा कुछ कम नहीं करवा सकते आप?
0: अब हवा का ज्यादा और कम होना तो भगवान के हाथ में है, और फिर आप भी तो भगवान हैं, खुद ही कर लीजिए ना।
2: हाँ भाई हाँ, हम तो ऐसे भगवान

0: जिसे सिर छुपाने के लिए टपकती छाती नसीब हुई है।
1: कोई बात नहीं, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा।
0: कब ठीक हो जाएगा?
2: जब बारिश बंद हो जाएगी तो छत अपने आप सूख जाएगी। हा? क्यों?
1: एक कमला,
3: हाँ?
1: भाई हमारे नए किराएदार जी को चाय तो पिलवाओ।
3: अभी लाए।
0: आप कहीं जा रहे हैं?
1: जी जनाब, जरा मुंबई तक जा रहा हूँ।
0: मुंबई में हमारा अपना मकान है।
2: कितना बड़ा जनाब, और कहाँ है?
0: अरे सात बंगला।
2: अरे बाप रे, सात बंगले हैं आपके वहाँ?
0: आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। किसी को भी कहिए हमें भगवान ने भेजा है, बस आपकी सेवा शुरू।
1: आप वैसे काम क्या करते हैं?
0: मैं सरकारी दफ्तर में नौकर हूँ, पर बीवी के नाम पर लोगों का बीमा भी करता हूँ। आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है ना?
1: सुनिए, अगर मैं अपनी बीवी का बीमा करवाऊं 1,00,000 का और कल वो मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा?
0: फांसी।
1: क्यों?
0: क्योंकि आप बीवी को मारने के लिए ही इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं।
3: लीजिए भाई साहब चाय और ये बर्फी भी।
0: अरे भाई साहब के लिए चाय नहीं लाई?
1: मैं तो रोज ही पीता हूँ इनके हाथ की, आप पीजिए ना।
0: अच्छा तो ब्यूटी पार्लर का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपको तो 2-3 लाख का बीमा करवाना चाहिए।
3: इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा ब्यूटी पार्लर सारे इलाके में मशहूर है। सबसे ज्यादा क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं और लेडीज और जेंट्स के अलग अलग केबिन्स हैं।
0: अच्छा,
3: हाँ?
0: ये रोज की कितनी इनकम हो जाती होगी?
3: धीरे बात कीजिए भाई साहब, धीरे।
0: अच्छा।
3: कोई सुन लेगा, दीवारों के भी कान होते हैं, बस ज्यादा नहीं 800 या 1,000 के करीब तो हो ही जाते हैं।
1: धीरे धीरे और धीरे बोलिए,
2: कहीं इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो?
0: इनकम टैक्स वालों की आप फिक्र ना करें, कोई अगर आएगा तो हम कह देंगे कि यहाँ बिल्कुल फ्री जनता की सेवा होती है।
1: अरे वाह, आपने तो कमाल की बात बताई।
3: इनकम टैक्स वाले तो 2-3 बार आए भी थे, पर हमें तो पहले ही खबर हो गई और हमने कमरे में बिल्कुल सफाई करवा दी।
0: आप काफी होशियार लोग लगते हैं।
2: अजीब बुद्धू बनकर काम नहीं होता, अजीब बात तो जब होती है जब हम दूसरों को बुद्धू बना दे।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ, आपने जाना भी तो है।
1: अच्छा,
0: नमस्ते। नमस्ते।
1: नमस्कार कमला
3: जी।
1: जल्दी से टैक्सी बुलवाओ भाई।
3: अभी बुलाती हूँ, आप अपना सामान तो बाहर लाइए।

0: आइए भाई साहब आइए बैठिए। आप हमारी दुकान में पहली बार आए हैं क्या?
1: हाँ, मैं ऊपर रहता हूँ, कुछ दिन से ही आया हूँ।
0: ऊपर? ओ किराएदार, क्या नाम है आपका?
1: भगवान।
0: भगवान ऊपर? हाँ, भगवान ही तो ऊपर रहते हैं। लेकिन देख लीजिए, आज भगवान हमारे काबू आ गया।
1: ये तेज धार वाले उस्तर को परे रखिए भाई साहब।
0: आप फिकर ना करें भगवान जी, पूरे 10 साल का तजुर्बा है।
1: 10 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं आप?
0: जी नहीं भगवान जी, यहाँ तो 6 साल हो गए हैं।
1: अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है?
0: तनख्वाह ये ना पूछो बाबूजी, रसीद तो लेते हैं 800 की और देते हैं 400।
1: ये क्यों? यहाँ काम तो बहुत है।
0: काम? अरे बाबूजी, 1000 रुपए रोज की इनकम है, न कोई हिसाब किताब, न हमें पूरी तनख्वाह।
1: तो तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करते?
0: शिकायत करके फिर ये नौकरी भी जाएगी, रोटी कहाँ से खाऊंगा बाबूजी?
1: दुकान के मालिक सुरेश बाबू है ना?
0: वो तो नाम के मालिक हैं। अरे असली मालकिन तो उनकी बीवी है, कमला देवी।
2: भाई सलाम बात
0: जी, उसे निपटा कर अभी आता हूँ।
2: अरे काम छोड़ दे, पहले आकर मेरी बात सुन ले।
0: भगवान जी आप बैठिए, मैं भी आता हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ जी बोलिए दीदी जी।
2: तुमने अभी

0: अपनी तंग खा के बाउचर पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए?
1: कमाल करती हैं बीवी जी। अरे मैं कब तक 800 की रसीद देकर 400 रुपए लेता रहूंगा? महंगाई बहुत बढ़ गई है और आपने रेट भी बढ़ा दिए, पर हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई? ये बहुत बेइंसाफी है बीवी जी।
0: काम करना है तो करो, वरना कोई और जगह ढूंढो।
1: ठीक है, अरे आप हमारा हिसाब किताब कर दीजिए, मैं अभी चला जाता।
0: क्या हिसाब? कैसा हिसाब? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, समझे?
1: अच्छा, अरे कैसे नहीं मिलेगा, मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगा।
0: अरे जा जा, बड़ा आया रिपोर्ट करने वाला, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
2: देखिए मैडम, आप गलत काम कर रही हैं। एक तो ज्यादा की रसीद लिखवा कर पैसे कम देती हैं, दूसरे आपने इस दुकान का कोई हिसाब किताब भी नहीं बना रखा है।
0: देखिए भाई साहब, आपको हमारे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं, आप हमारे किराएदार हैं, किराएदार ही बन के रहिए, मालिक बनने की कोशिश ना कीजिए।
2: मुझे इस मामले में दखल देने का पूरा हक है मैडम। आप हर बार इनकम टैक्स वालों को धोखा देती रही हैं, पर इस बार आप धोखा खा गई हैं।
0: क्या?
2: ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मैं इनकम टैक्स ऑफिस से आया हूँ।
0: पर आप तो हमारे
2: किराएदार हूँ नहीं, मजबूरन बनना पड़ा। चलिए मैडम, आपकी ये दुकान और इसका सामान सब सील करवा रहा हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए।
2: अरे अरे अरे सुरेश बाबू, आप वापिस आ गए?
3: क्या करता जी, आपको चाय पिलाना तो बहुत महंगा पड़ा, आपकी सेवा करते करते गाड़ी छूट गई।
2: आप वहाँ लेट हो गए पर यहाँ राइट टाइम पर आए हैं।
0: अजी अजी सुनो तो सही।
4: अजी क्या सुनूं, तुम्हारे लिए सोने का हार नहीं लाया ना, यही कहोगी ना? अरे जब मैं गया ही नहीं तो हार कहाँ से लाऊंगा?
2: अरे यहाँ सोने के हार की बात नहीं हो रही सुरेश बाबू, आप एक और मैदान हार गए हैं।
4: हार? मैदान? मैं कुछ समझा नहीं जी।
0: अजी इन्होंने हमारी दुकान बंद करवा दी है, ये किराएदार नहीं इनकम टैक्स के ऑफिसर है जी।
4: क्या कहा? इनकम टैक्स ऑफिसर? कमला पानी पानी।
1: अरे अरे बाबूजी, बेहोश होने से पहले बेचारे टैक्सी वाले के पैसे तो दे जाइए।
2: अरे अरे जरा पानी वानी तो लाओ।
4: कमला कमला
0: बोलो।
4: क्या बोलूं, गाड़ी भी गई, नौकरी भी गई, ऊपर की आमदन गई, दुकान गई, अब हमारा क्या होगा?
2: फिक्र ना करो सुरेश बाबू, तुम्हारा वही होगा जो मंजूर-ए-खुदा होगा।

हमारा क्या होगा। अभी आप सुन रहे थे प्रकाश साथी की लिखी ये झलकी, निर्देशक थे कमल दत्त, ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म पीकू से, इसमें गीत संगीत और आवाज है अनुपम रॉय की।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं ऊंचाई फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज में, गीत इशाद कामिल का है, संगीत अमित त्रिवेदी का,

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।

0: मान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
2: आइए अब सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज में बदला फिल्म का गाना, गीत कुमार का है, संगीत अमाल मलिक का,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के

0: ये अनुभव यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
0: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
0: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
2: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।

0: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
2: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
3: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
2: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
4: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
2: डीकॉलोनाइजेशन। सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरम ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अब ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है लावारिस। इसे लिखा है अनजान ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में कस्मे वादे फिल्म का गाना, गीत गुलशन बावरा का है, संगीत आरडी बर्मन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आरडी बर्मन, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में महान फिल्म का गाना, गीत अनजान का है, संगीत आरडी बर्मन का

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: अमिताभ बच्चन पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: लाओ जी, आज तुहानू दसांगा वायरल ना होने के तरीके।
3: ओ लोकी ता वायरल होने के तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होंदा।
2: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV AIDS किवें नहीं फैलदा। HIV AIDS नाल जी रहे व्यक्ति नू छोण जा हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांड्यां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जा मच्छर दे कट्टण नाल।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: आज के फनकार।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन हो तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम,

0: को कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चल रहे।
0: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
2: जॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
0: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
3: नो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
0: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
4: छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
0: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं, और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
5: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चल शुरू हो जाओ। 1 1 2 2 1 1 2 3 4।
0: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी, और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
6: मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
0: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
7: विकी, किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने कुत्तों कमीनो, अब हाथ उठा के दिखाओ। आओ एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
0: बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
8: तुम्हारा नाम शेर खान है?
9: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
8: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
9: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम
8: नहीं साहब।
10: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब ना तो वर्दी है ना कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
9: मतलब का बात बोलो साहब।
0: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई, और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
10: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे, और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
8: क्यों?
10: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले।

0: जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
1: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
2: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
1: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
2: हार जाता है?
1: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
2: तो क्या जुआरी है?
1: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है, हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
2: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
1: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
2: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
1: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
2: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
1: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी, अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
2: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
1: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
0: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद है।
3: आज खुश तो बात हो गए था, देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
0: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
4: आइए आइए प्रेमो बाबू,
3: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
4: क्यों,
3: क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
4: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
3: ओ सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है, मैं कह रहा हूँ कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम, क्या बकरी रहे
4: मैं लगा रखी है,
3: सीधी तरह बात करना। सीधी तरह कहां से करूं, बात को तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना, और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए हूं ना,
4: होना नहीं है ना।
3: हाँ

0: इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार के दिल की बात कहना चाहता हूँ तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है।
1: कंबख्त क्या?
0: परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है, इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
2: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहे हैं।
0: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
2: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
3: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
4: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of their own babasate. My name is Anthony Gonsalves.
5: What's that?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
6: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
7: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
6: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं।
7: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
6: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
7: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम सब।
3: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
8: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न माँ की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, समाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूँ, वो गीत गुनगुना लिया करता हूँ। आज वही गीत आपके सामने

0: महत्वपूर्ण फिल्में आई, फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुला लो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है, कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: ऐसा क्या? ठीक है, बक बक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है की बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट बियर जाना है।
4: अच्छा, वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
4: इंतजार?
3: हाँ।
4: कौन करता है?
3: अपना महबूब।
4: महबूब?
3: हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेगी ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
5: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
0: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
6: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता। दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है। अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
0: साल 1984 अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका फिल्म शराबी।
7: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दियो।
8: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
7: ओ, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
9: सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ।
7: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सके। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना।
9: ये तो आपका बड़प्पन है।
7: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख मैदान सफद चट।
9: बात कहनी थी मालिक।
7: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम?
9: सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है।
7: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें

0: हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो।
1: नथुलाल जी आपकी 3 बेटियां हैं ना?
2: नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
0: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
1: 2.5 लाख रुपया?
0: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा नथुलाल जी? मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। क्यों चलो बट ठीक है हमने।
3: हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों की छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें,
4: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले हैं। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
3: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
5: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोश।
3: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
6: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
7: आई नो माई सिस्टर बेटर ऑन यू।
8: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
7: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
9: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
3: निर्माता सुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा।
10: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर, जैसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माई क्लाइंट सेड नो योर ऑनर एंड दिस बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो।
3: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
11: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
12: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
11: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
12: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
11: विजय अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
12: मैं तो हमेशा ही बेकसूर।

0: ब्रदर रेडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
1: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
0: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
1: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाएं, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है। कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज़ के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
3: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
4: आज के फनकार।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: लाओ जी अज तुहानूं दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
2: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ ते तू वायरल ना होंदा।
1: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत में पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी श्रृंखला जिनमें वो गाने शामिल हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों स्वरों ने अलग अलग गाया है, पर सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन गानों को हमने एक दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। यादों की

जैसे सितारों पे लिखी होती है, सितारों के कैनवस पर बनता है कोई चेहरा और बस मन खिंचा चला जाता है गुजरे जमाने में। यादें जुगनू की तरह चमकती हैं, कोई खुशबू, कोई इमारत, कोई तस्वीर, कोई बात, कोई गाना हमें खींच कर ले जाता है उस वक्त की तरफ जो बीत चुका है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा, जो यादों में तब्दील हो चुका है।

सदियों से आसमान पर कंदील बनकर चमकता रहा है चांद। ये चांद अकेले लोगों का साथी है। ये चांद कभी उदास लगता है तो कभी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। चांद ने देखा है लोगों को खुश होते हुए, उदास होते हुए। बातें करता है हमसे ये चांद। न जाने कितनी पीढ़ियों की, न जाने कितनी बातें चांद को पता हैं, पर अब लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि किसी के पास चांद से बातें करने की फुर्सत ही नहीं है।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ये गाना। हम अभी हाजिर हुए

आया पर जिंदगी रुकी नहीं, बस चलती चली गई। लोग बिछड़े, लोग मिले, कारवां आगे बढ़ता गया। जिंदगी के माथे पर शिकन आती तो है पर इसकी मुस्कान कभी जाती नहीं है, इसकी मुस्कान कभी जानी भी नहीं चाहिए।

ही कितना कुछ सिखाया है हमें। कभी ये फूलों से लगी, कभी पथरीली राहों पे ले गई जिंदगी। सब कुछ बदलता रहा, कुछ खोया कुछ

बछाया गीत में पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी श्रृंखला जिनमें वो गाने शामिल हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों स्वरों ने अलग अलग गाया है, पर सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन गानों को हमने एक दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है।

0: आज के छायागीत में थे ऐसे गाने जिनके पुरुष और महिला दोनों संस्करण हैं, और सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन्हें हमने आपस में किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया है। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पे कॉल करो. पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी.
1: श्रोतियों हुण पेश है प्रोग्राम सुरसांझ. प्रोग्राम सुरसांझ लैके हाजिर है तुहाडी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा. मेरी प्यार भरी नमस्कार. प्रोग्राम दा आगाज कर रहे हां बब्बू मान दे गाए गीत नाल.

0: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने

0: नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।